जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अम्बाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज यकीनी बातचीत करेंगे आज के आमंत्रित मेहमान श्रीमती नीरजा बख्शी के साथ। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपुरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट एवं निर्देशन आरजे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर परिवार में, जहां बात होती है रिश्तों की, एहसासात की और उन अनमोल बंधनों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। कहते हैं घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से, अपनापन से और रिश्तों की गर्माहट से। और आज का हमारा विषय है बहनों का प्यारा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती भी है, ममता भी है और सुकून भी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई खूबसूरत रिश्तों की पहचान है। एक समर्पित होममेकर, एक स्नेहमयी माँ और एक संवेदनशील बहन। घर की जिम्मेदारियों को मुस्कुराकर निभाना, बच्चों के लिए छांव बन जाना और रिश्तों को धागे की तरह सहेज कर रखना, ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो आज हमारी गेस्ट है उनके पास ये सारे हुनर है। इन सभी भूमिकाओं को उसने सिर्फ निभाया नहीं बल्कि खूबसूरती से जिया है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर परिवार में।
2: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरजा बख्शी, मैं जम्मू से हूँ। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और जम्मू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है।
1: आपका हमारे घर परिवार कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। बहनों के इस खास विषय पर आपके अनुभव और आपके एहसास सुनने के लिए हम सब बेहद उत्सुक हैं। घर की दीवारों में जो खुशबू ठहर जाती है वो अक्सर किसी औरत की ममता कहलाती है। रिश्तों को जो चुपचाप सींचती रहती है वही घर की असली ताकत बन जाती है। नीरजा जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती है, आपके हिसाब से इस बात का असली मतलब क्या है? क्या सच में बहनों के बीच एक ऐसा एहसास और जुड़ाव होता है जो शब्दों से परे होता है?
2: जी हाँ किरनी जी, वाकई में बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती हैं। वो न सिर्फ साथ में खेलती कूदती हैं, बल्कि वो साथ में खाती पीती हैं, उठती बैठती हैं, हर छोटा बड़ा काम भी करती हैं। इसके अलावा वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती भी हैं, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है, उनकी आपस की लड़ाई उनको याद नहीं रहती और न ही उनको एक दूसरे के खिलौने छीनने से फर्क पड़ता है। ये ऐसा प्यार है जो बिना किसी मतलब के एक दूसरे से किया जाता है। ये ऐसा प्यार होता है जहाँ माँ की डांट से एक दूसरे को बचाया भी जाता है।
1: नीरजा जी, आपने सही कहा, बहन का रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से समझा जाता है, शायद इसलिए ये रूह से जुड़ा हुआ लगता है। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, बचपन में बहन का साथ हमारे स्वभाव, आदतों और सोच को किस तरह आकार देता है? क्या वही बचपन की यादें आज भी इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है?
2: बचपन में बहन ही सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी के साथ खिलौने, कपड़े, जगह सब कुछ शेयर होता है और वही छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह बनती है, पर ये लड़ाइयाँ कभी दूर नहीं करती।
1: आपने सही कहा, बचपन की वही छोटी छोटी बातें बड़े होकर भी रिश्ते को सबसे मजबूत डोर बन जाती है। अब आपसे मेरा अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं कि बहन का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा होता है, आपके अनुसार इस रिश्ते की वो कौन सी बात है जो इसे हर रिश्ते से अलग और खास बनाती है?
2: किरनी जी, आप जानती हैं, दोस्त हम जिंदगी में बाद में बनाते हैं, पर बहन बचपन से साथ होती है। दोस्त को हम अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बहन पहले से ही उस कहानी का हिस्सा होती है। दोस्त कभी कभी समझता है, पर बहन बिना समझाए सब कुछ समझ जाती है। दोनों खास होते हैं, लेकिन बहन का रिश्ता ज्यादा गहरा और पुराना होता है।
1: सच कहा, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन बहन का रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरा होता है। दोनों रिश्ते हमारी जिंदगी में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपसे मेरा अगला प्रश्न है, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों, उलझनों और चुनौतियों में बहन की मौजूदगी क्या मायने रखती है? क्या वो सचमुच में एक ऐसे सहारे की तरह होती है जो बिना कहे समझ ले?
2: आप जानती हैं, जिंदगी में हर इंसान को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बात बता सके, जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके और जिस पर वो भरोसा कर सके। इसी तरह बहन के साथ सीक्रेट शेयर करना भरोसे को मजबूत करता है। जब आप अपनी बात बिना डर के कह सकते हैं, रिश्ता गहरा होता है। ये सीक्रेट्स सिर्फ बातें नहीं, एक दूसरे का भरोसा होती हैं। इसी भरोसे से बहन का रिश्ता मजबूत होता है। अब बात है मुश्किलों की, जब दुनिया समझ नहीं पाती, बहन बिना समझाए समझ लेती है। वो बस पास बैठकर भी हिम्मत देती है, कभी शब्दों से कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। मुश्किल वक्त में बहन सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: आपने सही कहा, मुश्किल वक्त में बहन का साथ सच में एक हिम्मत जैसा होता है जो संभाल भी लेता है और समझ भी लेता है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ी बहन बहुत केयरिंग होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सख्ती के पीछे भी छुपा हुआ गहरा प्यार और जिम्मेदारी होती है?
2: जी हाँ, असल में बात यह है कि स्ट्रिक्टनेस और प्यार ये दो चीजें अलग है। स्ट्रिक्टनेस इंसान को गलतियां करने से बचाती है और प्यार इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करवाती है। बड़ी बहन शायद स्ट्रिक्ट इसलिए होती है क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी का एहसास बचपन में ही पैदा हुआ होता है। वो माँ की तरह हर बात पर नजर रखती है पर बहन की तरह प्यार भी करती है। उसकी डांट में सख्ती कम, चिंता ज्यादा होती है। बड़ी बहन घर की वो छाया होती है जो बिना कहे सब संभालते रहना चाहती है। कभी टीचर बन जाती है, कभी दोस्त और कभी माँ का रूप ले लेती है। केयरिंग होना उसके दिल की नरमी का एहसास है और स्ट्रिक होना उसकी फिक्र का तरीका है।
1: आपने बहुत सही कहा, बड़ी बहन की सख्ती में भी एक अजीब सी मिठास होती है क्योंकि उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। नीरजा जी, बहुत प्यार भरी बातें हुई, क्या आप संगीत सुनते हैं?
2: जी हाँ, मैं संगीत सुनती हूँ और संगीत से ही तो रूह को सुकून मिलता है।
1: तो फिर चलिए, आप अपना पसंदीदा गीत बताइए।
2: मेरा पसंदीदा गीत है अपने तो अपने ही होते हैं।
1: तो चलिए सुनाते हैं आपका पसंदीदा गीत, आपको और अपने श्रोताओं को।

0: आपसे मेरा एक और प्रश्न है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी बहन बड़ी बहन की बात मानती है, उस पर भरोसा करती है और उसे एक मिसाल की तरह देखती है। इस आज्ञाकारिता के पीछे कौन सा भाव काम करता है?
1: किरणी जी, अक्सर देखा जाता है छोटी बहन शुरू से ही, बचपन से ही माँ के बाद अपनी बड़ी बहन को देखती है। वो हर काम अपनी बहन की निगरानी में करती है, हर छोटी बड़ी जिद अपनी बहन के सामने पूरी करती है। इसीलिए उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन कभी उसके लिए गलत नहीं सोचेगी, कभी उसके लिए गलत नहीं करेगी और ना ही कभी उसको गलत रास्ता दिखाएगी। यही कारण है कि छोटी बहन अक्सर आज्ञाकारी होती है। बचपन से ही बड़ी बहन को एक मार्गदर्शक की तरह देखती है। उससे लगता है कि वे कह रही है तो यही सच है और उसमें ही उसकी भलाई है। छोटी बहन बहस भी इसीलिए कम करती है क्योंकि उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इसीलिए उसका आज्ञाकारी होना, बहन के लिए दिल में इज्जत होना और बहन पर विश्वास होना स्वाभाविक है।
0: आपने सही कहा, क्योंकि छोटी बहन का विश्वास ही इस रिश्ते को और खूबसूरत बना देता है। अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि बड़ी बहन बहन कम और माँ ज्यादा लगती है, किन बातों में वो माँ जैसी भूमिका निभाती हुई नजर आती है?
1: किरणी जी, आप जानती हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता और माँ अपने दूसरे कामों में व्यस्त होती है और बड़ी बहन अपना हक और अपना फर्ज बखूबी निभाती है। यही वजह है जब बड़ी बहन अपने छोटों को उनकी गलती बताती है और उनको गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, तब बड़ी बहन में माँ की झलक दिखाई देती है। वो अगर डांटती भी है लेकिन वो साथ में संभालती भी है। वो अगर उसको कुछ गलत करते देखती है, वो उसको बिल्कुल उससे बताए बिना ही उसको उस गलती से दूर कर देती है। माँ की तरह जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है तो उसे लगता है कि शायद मेरी माँ भी इतने अच्छे से मुझे नहीं संभाल पाती। जब माँ पास ना हो तो बड़ी बहन ही संभालती है और जरूरत पड़ने पर माँ का रूप ले लेती है। बिना कहे और बिना दिखाए वो एक माँ ही बन जाती है।
0: आपने बहुत सही कहा कि कई बार सच में ऐसा लगता है कि बहन बहन कम और माँ ज्यादा होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आज के बदलते दौर, दूरियों और व्यस्त जीवन शैली के बीच भी बहनों का रिश्ता किस रूप में बना हुआ है? क्या आज भी वही अपनापन, वही जुड़ाव महसूस होता है?
1: आज के दौर में जिंदगी पहले से काफी तेज हो गई है। सब अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, फिर भी बहनों का रिश्ता वक्त की कमी से कमजोर नहीं पड़ता। रोज बात ना हो तो भी एक छोटा सा मैसेज और कॉल दिल को सुकून दे देता है। आजकल बहनें एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गई हैं। दूर रहकर भी पास महसूस करना, यही आज के दौर की बहनों के रिश्ते की खूबसूरती है।
0: आपने सही कहा कि दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, बहनों के बीच की नजदीकियां कभी कम नहीं होती है, क्योंकि आज के बदलते दौर में एक फोन कॉल से हमें लगता है कि हम एक दूसरे के आसपास हैं।
1: किरणी जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं, क्या मैं आपके लिए वो पंक्तियां बता सकती हूँ?
0: जी हाँ, क्यों नहीं।
1: मेरी पंक्तियां इस तरह हैं, किताबों के पन्नों से पाक है फितरत उसकी, हर लफ्ज में बहती है सिर्फ मोहब्बत उसकी, किरणी की लेखनी में दिखता है बहनों का दुलार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार।
0: बहुत बढ़िया, आपने मेरे लिए भी शायरी बोली है। ये खाली शायरी नहीं है बल्कि तेरे लफ्जों में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। तेरी अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं मेरे लिए वो बचपन की यादें भी है। तू शायरी सुनाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी आवाज का हिस्सा है। शायरी तो बहाना है, असल मैं तो मुझे रुलाना चाहती है। शायरी तो बहाना है, असल मैं तो मुझे रुलाना चाहती है। तेरे लफ्ज का असर देखो, दिल को सीधा बचपन में ले जाती है।

0: सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। घर परिवार कार्यक्रम जारी है, अब हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। मिर्जा जी, अभी आपने जो शायरी बोली आपने मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर लिया। चलिए अब आगे। मिर्जा जी, घर संभालते हुए हर रोज ये सोचना पड़ता है कि परिवार को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो सेहतमंद भी हो, टेस्टी भी हो और ज्यादा वक्त भी ना ले। ऐसा कौन सी रेसिपी है जो आप अक्सर बनाती है, जो झटपट तैयार होती है और पौष्टिक भी होती है?
1: मैं अक्सर वेजिटेबल ओट्स चिल्ला बनाती हूँ। ये बहुत हेल्थी होता है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, ओट्स का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच दही, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक चाहिए, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अदरक। थोड़ा पानी डाल के इसका गोला बनाना है, फिर सब चीजों को मिलाकर डोसा जैसा गोला बना लेना है। गर्म तवे पर हल्का सा तेल लगाकर इस गोले को फैला देना है। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। इसे दही या हरी चटनी के साथ गरम गरम खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है।
0: बहुत बढ़िया है ये रेसिपी, वाकई एक तो हेल्दी भी है और झटपट बनने वाली भी। आगे नीरजा जी, बदलते मौसम में अक्सर सर्दी खांसी और सोर थ्रोट की परेशानी हो जाती है। घर संभालते हुए आप जरूर कोई ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाती होंगी जो आसान भी हो और असरदार भी। हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएंगी जो तुरंत राहत दे सके?
1: मैं अक्सर हल्दी और शहद का नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, जो सर्दी खांसी और गले की खराश में काफी राहत देता है। इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद चाहिए और 1/4 चम्मच हल्दी चाहिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर दिन में 2-3 बार धीरे धीरे चाट लीजिए।
0: बहुत बढ़िया। वैसे भी हल्दी में सूजन कम करने की ताकत होती है और शहद गले को नरम करती है। ये नुस्खा इम्यूनिटी बढ़ाता है और सोर थ्रोट में भी जल्दी सुकून देता है। आखिर में मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको बहन शब्द को एक खूबसूरत एहसास, एक परिभाषा या एक रूपक में डालना हो तो आप उसे किस तरह बयान करेंगी?
1: किरणी जी, मैं बहन को एक ऐसे एहसास के रूप में बयान करूंगी जो जिंदगी भर साथ चलता है। बहन वो होती है जो बचपन से आज तक आपके हर रूप को जानती है। वो डांट भी सकती है, हंसा भी सकती है और जरूरत पड़ने पर संभाल भी लेती है। पास हो या दूर, उसका प्यार हमेशा दिल के करीब रहता है। किरणी जी, मैं इसी एहसास को कुछ पंक्तियों के रूप में बयान करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आगे बढ़ूं?
0: जरूर जरूर, आप अपनी पंक्तियाँ हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: रिश्तों की भीड़ में सबसे प्यारा नाम है बहन। घर की रौनक, घर का सुकून, घर की शान है बहन। मुश्किल में जो सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है, हर दर्द की पहली पहचान है बहन।
0: बहुत ही अच्छी लाइनें, एक तो हार्ट टचिंग है और बहुत ही सुकून देने वाली लाइनें हैं।
1: किरणी जी, मैंने आपके बहुत से सवालों का जवाब दिया। मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकती हूँ?
0: जरूर, आप अपना सवाल पूछिए।
1: किरणी जी, जिस तरह मुझे सारी उम्र अपनी बहन की एक याद मेरे दिल दिमाग में रही, क्या कोई ऐसी याद है जो आपके दिल दिमाग में भी है?
0: जी हाँ, एक ऐसी याद है जो मैं हमेशा याद करती हूँ। क्यों? कारण उसका ये भी है, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मेरे से छोटी है, मगर छोटी होते हुए भी उसने एक बार, मतलब एक बार के कई बार मेरा जो ध्यान रखा, जो मेरा ख्याल रखा एक बड़ी बहन की तरह। एक बार का मुझे वाकई याद है कि मैं काफी बीमार हो गई, मुझे फीवर था, तो क्योंकि हम कश्मीर में रहते थे वहां सर्दी बहुत थी, तो वहां ठंडा पानी तो पी नहीं सकते थे, तो उन दिनों हमारे घर में गैस नहीं थी। वो रात के 1 बजे 2 बजे उठती थी, वो चूल्हे पर गर्म पानी करती थी मेरे लिए, मुझे चाय पीनी होती थी, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी। वो कम से कम 4-5 दिन का समय होगा जब तक मैं ठीक होगी, वो रात को नहीं सोती थी। वो हमेशा जब तक मैं ना सोती थी वो सोती नहीं थी, और ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी वो छोटी होकर भी मेरी बड़ी बहन बन जाती है, और ये याद हमेशा मुझे याद आती। जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे वो चीज याद आती है, मेरा कितना केयर करती थी। और मैं चाहती हूँ कि बहनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और हमेशा एक मिसाल बने कि बहनें ऐसी होती है।
1: तुमने ये किस्सा सुनाकर मेरा दिल भर दिया। सच तो ये है कि तुम्हारा मेरे लिए लगाव तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। पर क्या तुम्हें पता है, मेरे पास भी एक ऐसी याद है जिसने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं रहा। जब मैं कॉलेज की जल्दी में खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। वे मेरे हाथ में खाना पकड़ाकर मेरे बाल बनाना लगती। उनका वो प्यार भरा रवैया और ये जिद के भूखे पेट नहीं जाना आज भी मेरे दिल का करीब है। वो सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे बचपन की सबसे मजबूत डाल थी। किरणी जी, मैंने कुछ ऐसी लाइनें उनके बारे में लिखी हैं, मैं थोड़ा वो बताना चाहती हूँ। वो बचपन की फिक्र, वो बहन का दुलार, मैं भूल जाती थी खुद को पर उन्हें था याद हर बार। न जाने दिया कभी भूखे पेट मुझे दहलीज के पार, कभी कंघी से बाल सवारे तो कभी निवालों से ढेर सारा प्यार।
0: आज हमारी जो गेस्ट थी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहनों के प्यार के ऊपर इतने अच्छे अच्छे हमें उत्तर दे दिए। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का समय खत्म होता है। श्रोताओं, आज की इस प्यारी सी बातचीत में हमने जाना कि बहन का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी का एक सुकून है, एक ऐसा साथ जो वक्त, दूरी और हालात से परे होता है। बहन वो होती है जो हमारी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेती है और हमारी खामोशी में छुपे सवाल भी सुन लेती है। रिश्तों की भीड़ में जो सबसे खास होता है वो बहन का प्यार ही तो होता है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो बस दिल में महसूस होता है। सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहती हूँ, आज अगर आपकी भी कोई बहन है पास या दूर, तो इस कार्यक्रम के बाद उसे एक बार जरूर याद कीजिएगा, उसको फोन कीजिए, क्योंकि बहनें जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, वह किस्मत से मिलती है। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं किरणी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
1: मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती नीरजा बख्शी। कार्यक्रम रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपोरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल भट्ट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को ये नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित थे, मगर 1990 में वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां शिथिल है। देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है। सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है। मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है। चीथड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां किसी का भाई किसी का बाप पति किसी का, मौत की भेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीतकार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते। ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे। आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। तो लघु कथाओं की श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई लघु कथा जिसका शीर्षक है रिश्तों में नफा नुकसान। तो आइए चलते हैं लघु कथा की ओर। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई मिली। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का एक तरबूज दे रही है ये, और 10 रुपए किलो पड़ा। अरे बाजार से तो अभी तो तुम 20 रुपए किलो ले ही आती हो। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको मुझे मोल भाव करने दो। फिर लड़की से बोली, भाई 30 रुपए का एक देना हो तो दो वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ, ये देखो तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे को एक तरफ इशारा करते हुए बताया। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथ में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई और फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाला और बोली, क्या नाम है तुम्हारा भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर ही बिठा दो गाड़ी में, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा क्या? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। अब 5 किलो का तरबूज गोलू संभाल नहीं पाया, तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूट कर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिर कर फूट जाने से लड़का रोने लग गया। लड़की उसे पुचकारती हुई बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा ले आती हूँ। फिर वो दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींच लिया और खिड़की बंद कर दी। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, रे भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे ही मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए लिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा कि नहीं, पैसे तो मैं नहीं लूंगी। विनोद भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ गया और आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान देखा नहीं जाता, आपने गोलू को मेरा भाई बना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा सा भाई था मगर क्या हुआ तुम्हारे भाई को? विनोद बोला। वो बोली, जब वो 2 साल का था ना, उसे रात में बुखार हुआ था, सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है, उससे 1 साल पहले पापा भी हमें छोड़कर चले गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई,
फिर अपने बैग में से एक पायजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी और लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना ना, तो मैं तुम्हारी माँ जैसी ना हुई, अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रख दी। रख ले, जब भी पहनेगी तो जो हम सबकी बहुत याद आएगी। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था, भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए कितने हथकंडे अपना रही थी, अब कुछ ही देर में इतनी बदल गई जो 3,000 रुपए की पाजेब उस लड़की को दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? विनोद बोला, भैया आप वो जो मेन मार्केट वाली दुकान है ना, वो आप ले लें, मंडी वाली दुकान मेरे लिए छोड़ दें, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ही ले लूँगा, मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा रे छोटे। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई के रोने की आवाज सुनाई थी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या बड़े भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो मैं सब कुछ तुझे ही ना दे देता, अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा कर लेंगे। इतनी कड़वी कड़वाहट और इतने मीठे बोल ना जाने आपस में कहाँ से मिल गए। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे ना, वो आज एक दूसरे को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। जानते हैं इसके पीछे मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है, उद्देश्य क्या है और लेखक कहना क्या चाहता है? त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। और एक बात और कहूँ आपसे, ये कहानी अपने किसी जान पहचान वाले परिचित को भेज दीजिएगा। हो सकता है इससे उसके बहुत सारे बिगड़े हुए रिश्ते फिर से बन जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक। इन मौसमों के गुम हो जाने तक कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफ।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

0: परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।
1: मुझे

फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, आंखें सच बोलती हैं प्यार छिपाया न करो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2 जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोफोरी।

0: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। फौजी भाइयों के लिए पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम, जरा याद करो कुर्बानी।
1: जो शहीद

दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले भाग में कुछ फौजी भाइयों का अनुरोध था कि हम अपनी बटालियन में, अपनी यूनिट में फौजियों की मर्दाना आवाजें तो सुनते रहते हैं, अब हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी जो महिलाओं की आवाज सुनने की इच्छा है ना, वो पूरी हो सके। तो उनके अनुरोध को सिर माथे पर रखते हुए इस बार हमने कार्यक्रम में सभी गीत महिला गायिकाओं द्वारा ही गाए गए हैं, वो रखे हैं। फौजी भाइयों, जब आप सरहदों पर जाते हो तो सच में सर पर कफन बांध कर जाते हो, और कई बार कुछ फौजी भाई वहीं शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम इतिहास से मिट जाता हो, अरे वो तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आने वाली नस्लों तक में उनकी हस्ती की खुशबू सदियों तक महकती रहती है, और फिजाओं में उनकी रूह की आवाज़ गूंजती रहती है और कहती

आपके लिए फौजी भाइयों मौसम तो कोई मायने ही नहीं रखता। गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम, आप अपने कर्तव्य को लेकर हर पल डटे रहते हैं। आपकी मौजूदगी से जहां दुश्मन के प्राण सूख जाते हैं ना, वहीं आपके अपने किसी खुशगवार मौसम में परवरदिगार से दुआ कर रहे होते हैं कि

लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको तो बस अपने वतन की मिट्टी से किया गया वायदा ही याद रहता है, और आप उनको भी याद दिला देते हैं कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा लेकिन वतन के बिना नहीं चलेगा। आप तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि हमें कोई शिकवा नहीं है तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी, और उनकी जो बात होती है ना वो मन की बात मन ही मन में रह जाती है, और हार कर उनको भी यही कहना पड़ता है कि

भाई आपने तो कहकर दिल हल्का कर लिया, अब उनका क्या करें जिनकी दुनिया ही आप हो, जिन्होंने दिल के दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखा है। वो जमाने से शिकायत करते हैं कि हमने दिल ही क्यों लगाया, लेकिन फौजी भाइयों उनके त्याग और समर्पण को भी अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। ऊपर वाले से बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले हमारे इस सवाल का जवाब तो दे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। खैर, वक्त आने पर छुट्टी की अर्जी भी मंजूर हो जाती है, और जब पता लगता है ना कि अब छुट्टी पर जाना है, तब आपका मन भी बच्चों से फुदकने लगता है। मिलन और जुदाई, इन दोनों के बीच का जो वक्त है ना, वो काटने से भी नहीं कटता। यूनिट से घर तक का सफर ऐसा लगता है हजारों मील का हो गया हो। एक एक पल पहाड़ सा महसूस होता है, दिल कहता है कि काश

छुट्टी पर आने के बाद काम तो बहुत से होते हैं भाई, घर की मरम्मत करवानी है, बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, और गुड़िया के लिए रिश्ता भी तलाश करना है। भागदौड़ में तेजी से समय गुजरने लगता है। बड़ी मुश्किल से मौका निकाल कर कुछ पल जो उनके पास बैठते हैं ना, तो उनका कहना होता है कि

लेकिन आप तो अपने दायित्व को भलीभांति जानते हैं, कुछ काम हो जाते हैं और बहुत से काम रह भी जाते हैं। आप अपने दिल को दिलासा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब छुट्टी पर आऊंगा तो बाकी के काम कर लूंगा। आपने तो दिल को समझा लिया, लेकिन वो क्या करें जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और जिनको पहलू में बैठकर कंधे पर सर रखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी जुबान चुप रहती है, पर जानते हैं दिल क्या कह रहा होता है। उनका दिल उनकी जुबान से कह रहा होता है कि

आप उनको भी समझाते हो कि पगली कोई बात नहीं, नौकरी है, इस तरह जिंदगी चलती है, मिलजुल कर ही गुजारा होता है, कोई घर संभाल लेता है तो कोई सरहद, हम दोनों मिलकर ही गृहस्थी का पहिया चलाते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे जीवन में एक दिया है, एक बाती है, और हमारा वतन हमारा तेल है। अरे इसी को तो जिंदगी कहते हैं, इसीलिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भर के रेत की हवा में उछाल दी।

और देखते ही देखते छुट्टी के दिन हवा के झोंकों की तरह निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं गीतों के साथ साथ आपका मनोरंजन तो करूं ही, साथ ही आपके और उनके दिलों पर दस्तक दे सकूं और वो बातें करूं और सुनाऊं जो सच में आपके साथ बीतती हैं। आपका दिल जिन बातों को किसी को बता नहीं पाता। खैर, धीरे धीरे आपका वापस जाने का वक्त भी आने लगता है। अब तो समय भी बैरी हो जाता है। नमुआ किस तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। अब तो वो भी हल्की जुबान से कहने लगे हैं कि हमें भी ले चलिए ना, वहीं पर हम क्वार्टर लेकर रह लेंगे। कम से कम सरहद पर ना सही, घर पर रूम पर तो आपका साथ दे ही सकते हैं ना। और वो बार बार कहते हैं,

ओहो, मैं बातों की रवानगी में ना वक्त की बंदिशों को ही भूल गया। आपकी भावनाओं ने मुझे भी अपने साथ बहा लिया। मैंने अभी बहुत कुछ कहना था, चलो कोई बात नहीं, फिर सही। अब अपने रेडियो हम सफर मेरे शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम के अगले भाग में। और हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है, ये कैसा लगता है? हमें हमारे नंबर 7056413010 एक बार पुनः आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056413010 पर जरूर बताएं। और तब तक के लिए तो नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, एपिसोड 2, जरा याद करो कुर्बानी। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांची मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं, ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पाए टूटे मुक्तहार। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यावसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरना लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक, दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है। मुझे आशा है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

राम राम। जहां दूध दही का खाना योवा मेरा हरियाणा। जहां जामदे न्याणे नु सखैदे गाना बजाना योवा मेरा हरियाणा। जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना योवा मेरा हरियाणा। जहां अंडिया मा दाल पकाना योवा मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की बोछार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच में, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो अर शनिवार अर रविवार सबेरी 7:05 पा अर दोपहर नु 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: Hey, Dutch man. एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो विदस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।
0: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो विदस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा 90.0 मेगा।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं अम्बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ताजमहल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान है नेहा धाकड़, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: हम सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मैं था रहते रूबरू हूँ कार्यक्रम घर परिवार में। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप। आज हमारे मेहमान हैं नेहा धाकड़। नेहा जी, थारा स्वागत है FM 90.0 MHz पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने मेरे तो यो मौका दिया और मनु यहाँ बुलाया। मेरा नाम नेहा धाकड़ा और हम फतेहपुर गांव में रहा, और जो मेरी स्टडी है वो मैंने प्लस टू नगला स्कूल, जो मेरे गांव के थोड़ी दूर था, वहां से करी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी मास कम्युनिकेशन ते गवर्नमेंट PG कॉलेज अम्बाड़ा कैंट करी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा कराया PGDGMC मास कम्युनिकेशन का ही, पंचकूला गवर्नमेंट PG कॉलेज सेक्टर 1 ते। उसके बाद फिर मैंने PT की, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश।
1: तो नेहा जी, आज का हमारा विषय है आज का युवा। जैसा कि आपने बताया कि हम गांव में थे पढ़ने वास्ते बाहर जहाँ थे, जिस तरह आज का युवा पढ़ने वास्ते बाहर जहा, तो उसने किस तरह, कितने साधन आवा या किस तरह जहा आवा?
2: जिस तरह मैंने अपनी सारी स्टडी, जो भी मैंने पढ़ाई करी, वो गांव ते बाहर शहर में का ही करी, तो मतलब आज के टाइम में साधना का बहुत पर्याप्त मात्रा में मतलब साधन है गाँव में। जिस तरह पहला एक बस हो, एक राती बस, उसका टाइम था भी 8 बजे आना सवेरी, जिस तरह बच्चे कॉलेज में जहाँ थे, जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में, तो उसके बाद वो 2:30 बजे या फिर 5 बजे ऐसा टाइम था उसका। लेकिन आज के टाइम में गाँव में दो दो बसा लग रही, ऑटो वगैरह, मतलब मैजिक, सारी चीज़ों की फैसिलिटी है। और आज के टाइम में एक फैसिलिटी हो रहा है कि आज घर घर में साधन है, जैसे मोटरसाइकिल या कार वगैरह या स्कूटी वगैरह, मतलब हर घर में साधन है। आज के टाइम में फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगी बच्चे नू, और जिस तरह बच्चे गाँव में शहर में पढ़ने आवा तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होती।
1: जब लड़के लड़कियां पढ़ने वास्ते दूर जहां, तो उन्हें कुछ मुसीबत का सामना भी करना पड़ा?
2: हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी अपनी सारी 5 साल स्टडी बाहर ही करी है, गोमत एक शहर में आई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बस वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ। और इस चीज़ में मैं कहूँगी कि लड़कियों नू ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मुश्किल का सामना इस टाइप से करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने पहला भी बताया कि लड़के लिफ्ट लेकर जा सका, लेकिन लड़कियाँ लिफ्ट लेकर नहीं जा सकती। तो जैसे भीड़ हुआ बस वहाँ बहुत बहुत, तो फिर जैसे लड़के हुआ वो तो बाहर भी बारी पर भी लटक का चले जाएं, लेकिन लड़कियां उसमें लटक नहीं सकती। कई बार बसा नहीं मिलती तो उन्होंने बसा के पीछे भागना पड़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन हुआ भीड़ के अंदर जिसमें मैं शायद शब्द में नहीं बयां कर सकती, और उस चीज़ नु सिर्फ वही समझ सका जिसने चीज़ फेस करी हो। क्योंकि मैं जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ी, तो फिर मैं बसा में ही मेरा आना जाना था, तो उस चीज़ नु वही इंसान समझ सका।
1: तो इसका क्या समाधान हो सका?
2: हाँ, लड़कियां नू बहुत ही मुश्किल हुआ जैसे बसामा, तो इसका यही समाधान है कि मतलब लड़कियां वास्ता कोई अलग से बस की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ लड़कियां, लेडीज, औरतें ही ट्रैवल करा, और मतलब जैसे कंडक्टर हुआ बस की, तो मतलब लड़की हो, ताकि उन्होंने कंफर्टेबल फील हुआ कि हाँ, मतलब किसी टाइप से वो अपने आप नू यूं ना महसूस करा भी हाँ हम यहाँ खड़े या कुछ ऐसा। और मतलब इसके लिए कुछ टाइम तक ये सर्विस मिली भी, कुछ बस चलाई गई जिसमें सिर्फ लेडीज ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सर्विस बंद कर दी जा। और एक सिस्टम हो रहा, मतलब जैसे बस की बारी हुआ, तो मतलब ऐसा सिस्टम कर लें कि जो फर्स्ट वाली बारी उस पर सिर्फ लेडीज ही मतलब चढ़ांगी बस में, जो पिछले वाली बारी उसमें बॉयज या जेंट्स ये चढ़ सका। तो मतलब इस टाइप के कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि जो हमारी लड़कियां हैं या हमारी औरतें, उन्होंने पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और वो अपनी पढ़ाई नू अच्छे तरीके से आगे तक लेकर जा सके।
1: तो जिस तरह आप बस में पढ़न जहाँ थे, बस में सफर कराते, तो वहाँ आप किस तरह टाइम अपना स्पेंड करे कराते?
2: हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मैं अपने गांव ते यहाँ बाड़े वास्ते आऊँ थी, तो थोड़े टाइम का ही रास्ता हुआ था, उसमें मैं मतलब यही कि सॉन्ग सुन लिए या कुछ जैसे अपनी स्टडी से रिलेटेड पढ़ लिया, कुछ करंट अफेयर मेरे पास सब्जेक्ट था, तो मैं न्यूज़पेपर ले लूँ थी बस स्टैंड से, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती आंदी रहूँ थी रस्ते में। लेकिन कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ का भी बंदा, तो कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ ली उसके बाद फिर मैं कुछ सॉन्ग वगैरह सुन लूँ थी। और जैसे मैंने पंचकूला करी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो बहुत ही लंबा सफ़र था, और उसके साथ साथ ही मैं गाने सुन लिया करूँ थी, इंजॉय करे अपना सफ़र।
1: अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग मारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आप?
2: बिल्कुल, मैं ज्यादा मतलब जो गीत होते हैं वो जैसे हिंदी भी सुन लो या फिर पंजाबी, जैसे मेरे फेवरेट सिंगर सतिंदर सरताज जी और एमी विर्क जी हैं, तो मैं सतिंदर सरताज जी का एक सजन राजी गाना थोड़ा सा आपनों सुनाना चाहूंगी। प्यार हुंदा फुल्लां तो मलूक सोणिया, जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोणिया, दूर किते जंगलां च नचदी फिरे, शहर तक सुन जांदी हूक

0: चला अपने कार्यक्रम की तरफ। जब आप कॉलेज में पढ़ा थी तो आपके पास कौन कौन से विषय थे?
1: जी मैंने जिस तरह ग्रेजुएशन भी जनसंचार ते करी है, मास कम्युनिकेशन ते, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो मेरे पास यही सब्जेक्ट थे जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटोग्राफी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर, यही सब्जेक्ट थे मेरे पास मेन। और मैंने मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपनी स्टडी करी है, तो स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिविटी जो कॉलेज में परफॉर्मेंस हुआ थी उनमें भी पार्टिसिपेट करा, जैसे डिबेट होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी और कविता होगी, और जैसे मेरे पास कॉलेज में जैसे NCC होती है, NSS होती है, तो मैंने NSS में भी पार्टिसिपेट कर रखा था, और उसमें जैसे कैंप वगैरह लगाते तो मैं उनमें भी जाऊँ थी।
0: घर में अपना समय क्या करने में बितावा आप, जो आपके पास आपका खाली समय हुआ किस तरह बतावा?
1: जी जिस तरह मेरा खाली टाइम हो आज, जिस तरह पहला तो मैं अपने घर का काम करूँ, सारा झाड़ू पोछा अपना, सारा जितना भी काम हो घर का एक, तो उसके बाद जैसे फिर फ्री हो जाऊं काम करने के बाद, तो जैसे मैं अपनी कोई स्टडी से रिलेटेड या मतलब जो मेरा प्लानिंग है फ्यूचर में उससे रिलेटेड मैं कुछ काम करूं, मतलब कोई बुक्स वगैरह या कुछ भी जो भी पढ़ना होगा उसके लिए वह करूं। फिर उसके बाद मतलब मैं कुछ टाइम अपना एंटरटेनमेंट करने वास्ता जिस तरह सॉन्ग सुनूंगी या कोई मूवी देखूंगी, फनी मूवी, कोई मूवी वगैरह देख लिया तब भी टाइम नहीं स्पेंड हो रहा, तो मैं यूट्यूब से कोई रेसिपी देख लूं नवी की, कुछ नया बनाया जा कुछ अलग सा, इस टाइप से मैं अपना टाइम स्पेंड करूं।
0: तो अपनो खाने में क्या क्या बनाना हुआ?
1: खाने में जिस तरह अपना रोटी सब्जी है तो सारा ही आवा, जैसे कोफ्ते या रायता या फिर कड़ी चावल, मक्के की रोटी होती है वो भी बना लेती हूँ, गेहूं की रोटी तो चलो सभी बना लेते हैं, मतलब सारा काम जो भी रसोई का काम होता है सारा काम कर लेती हूँ मैं।
0: कभी कुछ आपने बनाना कुछ और चेहरे या बन गया कुछ और, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई या?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरी साथ मतलब अभी कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, जैसे मैं ना मतलब सोच रही थी बहुत, मम्मी ने बोला अभी खाना बना लो आप, तो उस टाइम मैंने दाल बनानी थी, जैसे मूंगी मसरी की दाल हो अपनी, तो वो दाल बनानी थी मैंने, तो मूंगी की तो डाल ली, फिर उसके बाद मैंने उसमें डालनी थी मसरी की, लेकिन उड़द की डाल दी, वाइट उड़द हुआ जो, तो फिर मैंने देखा मैं कि इसका कलर तो वाइट है, डालनी तो मैंने संतरी ऑरेंज कलर की थी, तो फिर सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने वो भी डाल दी, तो वो तीन टाइप की दाल होगी, तो फिर मैंने जैसे वो दाल बन गई तो मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया, मैं कहा मेरे पते आज गलती होगी यार, मैंने यह दाल तीन टाइप की बना दी, तो कह रही चलो कोई नहीं, जब उन्होंने खाई तो उन्होंने अच्छी लगी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि गलत किया यूं किया।
0: तो थारी कोई फेमस रेसिपी जो आज थारे घर के अनु बड़ी पसंद हो?
1: बिल्कुल हाँ, मतलब जो मेरे रिश्तेदार आवा या मतलब मेरे फैमिली वाले, उन्होंने मेरे खीर पूड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कि मतलब जैसे मेरी सिस्टर जिनकी शादी होगी है ना, तो वो जैसे बोलना तो कह रही भी नेहा इबम ऐरे मतलब घर तो खीर पूड़े बना दे अपने हाथ के, मनु वो बहुत पसंद आ। उसके साथ ही मतलब मैं और सारी चीज़ें जैसे गुलगुले हुआ अपने वो भी बना लूं, मतलब और भी सारी रेसिपी बना लूं, लेकिन जो मशहूर है जो मेरी रेसिपी वो खीर पूड़े ही हैं, तो मेरे रिश्तेदार सब या मेरे फैमिली वाले खीर पूड़े मेरे बहुत ही पसंद करा, तो खीर पूड़े बनाने वास्ता हमने पहला जिस तरह खीर हुआ, तो खीर वास्ता दूध नू रखो गैस पर या चूल्हे पर जिस पर भी आप बना रहे, तो दूध नू उबाल, जब तक उसमें उबाल नहीं आता तो उसमें चावल ना पाओ, जैसे चावल मतलब एक तो चावल हुआ मतलब लंबे वाले, लेकिन उसमें ना किणकियां वाले चावल यूज करने चाहिए, उसकी ज्यादा टेस्टी बना खीर, जब उसमें दूध में उबाल आ जाए तो उसमें जो किणकियां वाले चावल है उसनू पानी में अच्छे तरीके से धो का थोड़ा टाइम पहला भगो का रख दो उसनू, ताकि वो अच्छे हो जाए मतलब गल जा, तो फिर उसनू चावल नू डाल दो खीर के अंदर, फिर उसनू पकाओ भी, जब तक ना चावल और दूध आपस में मिल ना जा तब तक वो गैस बंद ना करो, हल्की आँच पर उसनू पकाते रहो, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सका, काजू जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, किशमिश वगैरह, और जो ये तो खीर बन गई जैसे हमारी, तो फिर पूड़े वास्ता आप क्या कर सका, जैसे आटा लो पहला गेहूं का आटा हुआ, तो गेहूं के आटे में आप जैसे चीनी की चाशनी या फिर आपके घर शक्कर की चाशनी या गुड़ उसकी चाशनी नो ऐड करो, तो आटा मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा करड़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा आटा होना चाहिए, ताकि जैसे हम उसनु तवे पर गेरेंगे तो आराम से उठ सका, तो उसनु मिक्स करके आप उसमें काजू बादाम डाल सका, अगर आपकी इच्छा इलायची छोटी इलायची कूट का इलायची डाल सका, फिर उसमें आप तवे मतलब तवा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर तवे पर बिल्कुल कुछ रह गया मतलब तवा साफ ना करेगा तो वो जो हमारे पूड़े वो तवे से उठने के नहीं है, वो वहीं चिपक जाएंगे, तो तवा अच्छे तरीके से धोना होना चाहिए, और फिर उसनू पूड़े नु हम जो आटे का गोला उसनू हम तवे पर गेर दें, और फिर उसनू सारे तवे पर फैलाने वास्ता जैसे हम तो यूज गाँव में तो जो जामण का पत्ता हुआ उसनू यूज करा, जामण के पत्ते दे उसनू सारे तवे पर फैला दे, फिर उसकी साइड में घी तेल जो भी आपके पास है वो डालना, फिर उसनू उठा लें हल्के दे, और फिर इस तरह हमारे पूड़े तैयार हो जाओ।
0: क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई और अपना मनपसंद गाना सुनाना चाहोगे?
1: जी बिल्कुल, जैसे मैं पंजाबी सारे ही गाने सुनो, हिंदी पंजाबी, तो मतलब हरियाणवी एक सॉन्ग है वो भी मैंने बहुत ही अच्छा लगा, जिप्सी सॉन्ग है वो, हरियाणवी सॉन्ग।
0: तो क्या आप हमारे श्रोता वास्ता थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ सहजो

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमारा आज का कार्यक्रम है घर परिवार। तो नेहा जी, आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग करा और कितना जुड़ा है उससे?
1: जी बिल्कुल, आज का जो युवा वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा। आज के टाइम में मतलब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो भी मटेरियल चाहिए पढ़ाई के रिलेटेड, अपना सर्च करो और सारा मटेरियल मिल जा। और जिस तरह जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, जिस तरह मनु पूछना भी पुराने टाइम में मिट्टी के बर्तन होए कराते, उनमें क्या खाना बने कराता कुछ भी, तो हम अगर सर्च करांगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी और मतलब पता लग जाएगा भी हाँ मिट्टी के बर्तन का कैसा कैसा प्रयोग हो अतर क्या क्या उनमें दाल सब्जी बनावा थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और युवा बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर रहा। युवा भी लगा लो, आप बुजुर्ग भी लगा लो, सब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में।
0: तो जिस तरह हमारा आज का युवा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है हमारी जिंदगी पर?
1: जी बिल्कुल, वही मतलब एक बात दीपक जी मैं आपनों कहना चाहूंगी भी हर चीज के दो पहलू हुआ, एक सही हुआ एक गलत हुआ, एक अच्छा हुआ एक बुरा हुआ। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में इसके भी दो पहलू हुआ, एक अच्छा एक बुरा, इसनों दो तरीके ते ही ले रहे हैं मतलब अच्छा और बुरा। तो जिस तरह यूज कर रहे इसनों मतलब हाँ इसमें बहुत अच्छी चीजें भी आवा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आवा जो शायद जो देखने लायक नहीं होंगी। तो मतलब युवा जैसे कोरोना के टाइम की मैं बात करूं, ऑफलाइन पढ़ाई तो बंद हो गई थी तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, तो स्कूल में बच्चों नु फोन दिए गए टैब 10वीं और 12वीं वाले नु, तो बच्चा ने मतलब वो सिर्फ पढ़ने वास्ते दिए गए थे, उसमें उस टाइम वो ऐप थी जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बात करी गई थी उनकी क्लास से रिलेटेड, लेकिन बच्चा ने उसमें उसके अंदर सोशल मीडिया और अलग अलग ऐप डाउनलोड कर लिए, गाने सुनना, या मतलब बच्चे उस चीज पर बहुत ज्यादा गलत की तरफ लेकर चले गए। मतलब दिए थे तो वह सही यूज वास्ते लेकिन उसमें गलत यूज कर लिया उन्होंने, तो टेक्नोलॉजी का गलत यूज भी हो रहा कहीं ना कहीं मैं कहूंगी आज के टाइम में।
0: तो जिस तरह हमारे गांव के बच्चे हुआ या किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, तो वो स्कूल में जहा और वह गेल फोन लेगा जहा, तो क्या है वो ले जाना अच्छा?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं या मेरे टाइम थे थोड़े टाइम की पहला, तो अगर मतलब बच्चे के पास अगर फोन मिल जाता स्कूल में तो उसने बहुत पनिशमेंट दिया थी, बहुत ज्यादा मतलब उसने घर उसके बताया जाता भी हाँ इसके पास फोन मिला। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैं देखूं, जैसे मैं ट्रैवल करूं बस में भी या मैं जैसे अपने कॉलेज टाइम में मैंने देखा, तो बच्चे फोन का यूज बहुत कर रहे, और जो स्कूल के 10वीं 12वीं के बच्चे वो भी फोन लेकर स्कूल में जा रहे हैं, ये फोन ले जाना स्कूल टाइम में। जैसे मैं बात बताऊं जैसे 10वीं 12वीं यही बच्चे का एक बेस हुआ जहाँ तो उसने कुछ करना या आगे बढ़ने की प्लानिंग करा भी हाँ, लेकिन वो बेस यहीं ते खराब हो जा, फोन में ध्यान दे रहे तो फोन में वही सोशल ऐप या फिर म्यूजिक, तो उसी गेम खेल रहे हैं। बहुत सी गेम बैन भी करी गई, बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे, गलत लग गए थे करने अपने साथ, तो इस टाइप से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मतलब जब बच्चे फोन का यूज कर रहे तो माँ बाप नु भी देखना चाहिए भी मेरा बच्चा फोन में क्या देख रहा क्या नहीं। तो यह ड्यूटी मतलब बच्चे की नहीं, एक माँ बाप की भी बना कि उसनु अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा फोन कब तक यूज कर रहा क्या देख रहा, और एक लिमिट होनी चाहिए फोन देखने की, है ना। यूं नहीं कि बच्चा सवेर ते फोन देख रहा शाम तक देखता ही रहा देखता ही रहा, अगर उसनु फोन ना दे तो वो रोन लग जा कि मैं फोन नहीं दिया मैनू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप नु भी थोड़ा रूल रेगुलेशन करने चाहिए बच्चे के प्रति।
0: तो हम भी एक युवा है और आज के युवा नु आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं भी एक युवा हूँ तो मैं युवा होने के नाते यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे माँ बाप हैं वो मानू चाहे लड़का चाहे लड़की पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे बच्चे नु यहाँ भी दिक्कत ना हो यहाँ भी दिक्कत ना हो। तो जो हम बच्चे हैं तो हमारा भी एक फर्ज बना अपने माँ बाप के प्रति, बिना ने मानू जन्म दिया हमारा पालन पोषण करा, तो हम भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करा, और जो उन्होंने हमारे ते इच्छा है भी हाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख का एक अच्छी जगह कहीं देखना चाहवे और जो भी उनकी इच्छा वो इच्छा पूरी कर सका।
0: नेहा जी, हम थारे ते एक और गाना सुनना चाहेंगे लेकिन कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लेंगे हम इजाजत। जय हिंद जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने मेरे ते यहाँ बुलाया। जय हिंद जय भारत। और एक मैं आपनु अपना फेवरेट गाना और सुनाना चाहूंगी, मस्त बना

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान थे नेहा धाकड़, एडिटिंग व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग सेजल पुंज, निर्देशन भारत सोपोरी।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो विदस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
4: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
3: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ
2: 90.0 ਮੇ

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं हूं भारत सोपोरी और कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के साथ आप अपने आप को जोड़ते हैं और अगर आपने भी कोई उत्कृष्ट कार्य किया है आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हरियाणा के ज़्यादातर सामुदायिक रेडियोज पर लाइव होता है और आपकी बात पूरे हरियाणा तक पहुँचती है। और साथ में अगर आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है आप उसके बारे में बता सकते हैं, या कोई आपके आसपास कोई कमी है जो आप हरियाणा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इसमें हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होते हैं। और आपको करना होगा कॉल, नंबर है 8816904904। नंबर एक बार फिर याद कर लीजिए 8816904904। कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम राम राम हरियाणा।

जी हाँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ भारत सोपोरी और अंबाला छावनी से प्रसारण होने वाला सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता से मैं बोल रहा हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ अपने दोस्त

0: प्रीतम जी का, जो अपना रेडियो चरखी दादरी से हमारे साथ पटल पर इस समय है, गुरविंदर जी है, और साथ में आज हमारे जो मेहमान है ग्राम पंचायत यूनुसपुर से श्री प्रिंस जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और जब तक हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ते हैं और भी अन्य हमारी साथी जो है जुड़ते हैं, तब तक हम सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं ये कार्यक्रम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और साथ में हरियाणा के ज़्यादातर सामुदायिक रेडियोज पर ये लाइव है। आप इस समय लाइव है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला से, चरखी दादरी से, अपना रेडियो से, रेडियो अरावली नारनौल से, रेडियो गोंदर करनाल से, और FM भारती पेहवा से, और अन्य सामुदायिक रेडियोज पर आपकी आवाज़ इस समय जा रही है। आज के मेहमान से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने फ़ोन को अगर हॉरिजॉन्टल मोड में रखें तो आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर आएगी, और फ्रंट पे अगर आप कुछ लाइट ऑन करेंगे तो आपका चेहरा हमें साफ सुथरा दिखेगा। तो जब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तब तक आप ये काम कर लीजिए प्रिंस जी। और आज है 2 जून 2026 मंगलवार, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीय 2083 विक्रम संवत। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान होते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, और ख़ास करके जब ग्राम पंचायत की बात होती है, जो सरपंच हमारे साथ जुड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सरपंच जो है वो उस गांव के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ग्राम सरपंच को मिलती है तो उसका दायित्व भी उतना ही बड़ा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि जो आज के हमारे मेहमान हैं, जो आज हमसे जुड़े हैं, वो हमारी बात सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपनी बात को भी हमें कहें। जब तक वो सीट पर फिर आते हैं तब तक मैं प्रीतम जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रीतम जी आप कैसे हैं?
1: नमस्कार भारत जी, और नमस्कार सभी श्रोता और दर्शकों को। भारत जी मैं बढ़िया हूं, और अब मौसम भी थोड़ा सा ठीक ठाक है क्योंकि 37-38 डिग्री टेम्परेचर है, ज्यादा गर्मी नहीं है, हवाएं चल रही हैं पूर्वी हवा, तो सब ठीक ठाक है भारत जी।
0: बहुत बढ़िया, और यही तो हम उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि सरपंच जी एक बार सीट पर बैठ जाएं और सारे काम ये बाद में करें, पर अभी हमें ये सीट पर बैठते हैं फिर उठ जाते हैं, तो इससे हमारी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। गुरविंदर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जब तक सरपंच जी जुड़ते हैं तब तक आप सरपंच जी के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो गाँव के बारे में, यूनुसपुर के बारे में बता सकते हैं।
1: लगता है गुरविंदर जी भी चले गए हैं।
0: गुरविंदर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलती।
0: जब तक स्वागत
2: राम राम हरियाणा के इस पैनल में जुड़े सभी श्रोताओं और हमारे जो मेहमान हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम मार्च में शुरू हुआ था, अभी तक हम 40 के करीब पंचायतों को इस पैनल पे ला चुके हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गांव के विकास की गति को तेज करना, ताकि जो हमारे जो सरपंच जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं, जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों के साथ साझा करते हैं। इससे हमारी जो और पंचायतें हैं या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें भी मोटिवेशन आती है ताकि वो आगे आके काम कर सकें। आज जो हमारी ग्राम पंचायत है ये है यूनुसपुर, जे नीलोखेड़ी विकास खंड की पंचायत है और जिला करनाल में पड़ती है। इसके सरपंच श्री प्रिंस जी हैं, जिनका हम इस प्रोग्राम में अपने हरियाणा के चैनल से स्वागत करते हैं। उनका आभार वर्क व्यक्त करते हैं कि उन्होंने थोड़े समय के नोट्स पे हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर हुए। थोड़ा मैं इस गांव के बारे में बताना चाहूंगा। ये ग्राम एक ग्राम पंचायत 1000 वोट है सिक्की, और 1500-1600 के करीब पॉपुलेशन है, आबादी है वहाँ की। और इस ग्राम पंचायत में इन्होंने एक कम्युनिटी कम्प्लेक्स फाइव पॉइंट सिस्टम जो पानी का होता है और पीने वाले पानी का बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। आंगनबाड़ी वहाँ केंद्र है और स्कूल भी अच्छा है इनका, मतलब देखने में ये गांव एक शहर से कोई कम नहीं लगता है, बड़ी अच्छी साफ सफाई है। मैंने खुद इसको विजिट किया है और सरपंच साहब भी हमारे यंग हैं, नौजवान हैं, इनमें काम करने की भी मतलब अपने भावना है, उसी की तरह ये काम कर रहे हैं। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे जो आज के मेहमान हैं श्री प्रिंस जी, उनसे बेनती करूंगा कि वो अपने इस प्रोग्राम में जुड़ के अपने जो एक्सपीरियंस है या उनको काम कराने में जो दिक्कतें आई उसको कैसे उन्होंने अपने रास्ते से हटा और एक गांव को अच्छा गांव बना, उसके लिए वो अपना अपने पर्चे के साथ शुरू करें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर जी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको देख के हम पूरे हरियाणा को देख पाते हैं, क्योंकि आप ऐसे प्रतिनिधि हैं जो हमारे प्रतिनिधि भी है और साथ में आप जनता के भी प्रतिनिधि है। हमें भी ये होता है कि अगर कोई भी सवाल आ जाए और जो सरकार से कोई मांग करते हैं या कोई भी बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप नहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। आपका स्वागत और अभिनंदन।
1: भारत जी, विकास बंसल जी का सवाल आया था, हाँ, तो उसका उनको उत्तर मिल चुका। वो पूछ रहे थे कि वीरेंद्र जी क्या प्रोग्राम में जुड़ेंगे, तो वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में, विकास बंसल जी।
3: भारत जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे न्योता दिया कार्यक्रम में आने का। मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित होकर गर्वोन्नत हूँ, आनंदित हूँ, मस्ती में हूँ और मुझे मुझे अच्छा लगता है आपके इस कार्यक्रम में हर दिन रहना। और कभी कभी जब मैं फंस जाता हूँ ना कहीं कि आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो आप सच में यकीन मानिए मैं इतना बेचैन हो रहता हूँ कि आई एम मिसिंग समथिंग। बहुत अजीब सी विकलता रहती है यार, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं जुड़ पा रहा। तो अभी कुछ कार्यालय की व्यस्तताओं के कारण मुझे 5-7 मिनट देरी हो गई जुड़ने में। और जो सरपंच है हमारे, ये यूनिसपुर के सरपंच हैं, आप जरा बोलें, आपकी आवाज हम तक आई नहीं है अब तक। सरपंच साहब
4: नमस्कार। सर
3: नमस्ते, कैसे हैं आप?
4: ठीक हूँ सर, ठीक हूँ सर, आप बताओ।
3: तो प्रिंस जी, जी कैसी चल रही है चौधर?
4: ठीक चल रही है सर, अच्छी चल रही है।
3: स्वाद आ रहा?
4: हाँ जी, विकास कर रहे हैं सर अपना गांव का।
3: चलो बहुत बहुत ठीक है। पहले न्यूज में देख रहे थे भी सरपंच बने तो अपना विकास करे, सरपंच बने तो अपने कुनबे का विकास करे, सरपंच बने तो अपनी कोठी बढ़ावे, सरपंच बने तो अपनी गाड़ी बड्डी ले आवे। भाई हमारे सरपंच साहब कह रहे हैं कि गांव का विकास कर रहे हैं। जरा एक बार अपना व्यक्तिगत परिचय थोड़ा सा दीजिए, अपनी परिवार की पृष्ठभूमि बताइए। सरपंच कैसे बन गए, के सोच कर बने, क्यों लड़ी सरपंची, यू पंगा क्यों लिया, अरे इसमें स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा, जरा बताइए खुल के हमारे सुनने वालों को।
4: सर बस यही था, चलो सरपंच के चुनाव लड़ेंगे, अपना बन का अपने गाँव का विकास करेंगे, वो सर कर रहे हैं।
3: पढ़ाई क्या की आपने?
4: सर मैंने बीए कर रखी है।
3: कहाँ से की थी बीए?
4: दयाल सिंह कॉलेज से सर।
3: दयाल सिंह कॉलेज से। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे?
4: सर ये फिजिक्स, इंग्लिश,
0: पीसीएम,
4: हिस्ट्री, जी पीसीएम। हाँ जी।
3: चलिए तो सरपंच साहब मुझे तो ये बता दीजिए कि आपकी सरपंची आपके थे पीछे, आपने कहा मैं के करा नवा।
4: सर मैंने जो गांव में सड़कें थी वो पक्की कराई है सारी।
3: क्या कितनी सड़क बनी?
4: सर मैंने कर दी होंगी 17-18 सड़कें, गांव की गलियां पक्की, गांव की फिरनी पक्की करी है सर एक। और जो खेतों के रास्ते सर कच्चे थे पुराने टाइम में, बने थे सर 1995 के 96 के, खेतों के रास्ते सर वो पक्के कर दिए मैंने।
3: ठीक है।
4: और गांव में पब्लिक हेल्थ थी, पाइपलाइन सर बिल्कुल कमजोर थी, कंडम खस्ता हालत में थी, जिससे पाइप लीकेज सागर में गंदा पानी जाता था। सारे गाँव में सर पानी की लाइन बिछा दी, टोटली सिर्फ 2-3 गलियां रह रही है। और सर एक ट्यूब लगवाया सर 750 फुट पे बड़ा पब्लिक हेल्थ का, जिससे गांव वालों को अच्छा पानी मिल रहा
3: है। यूनिसपुर के कुछ चीजें मैं नोट कर रहा हूँ। यूनिसपुर जो है ये कितनी वोट का गांव है?
4: सर मेरे गांव में 1100 वोटे हैं।
3: 1100 वोट आबादी?
4: आबादी सर यही है 1400-1450।
3: नहीं कम से कम 2200-2300 तो होनी चाहिए।
4: नहीं नहीं सर।
3: अच्छा तो जी, कौन कौन सी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं?
4: सर मेरे गांव में रोड है, पंडित जी हैं,
3: रोड ब्राह्मण,
4: ब्राह्मण
3: जी,
4: और बाकी हरिजन है, वाल्मीकि है, कश्यप है।
3: हरिजन, वाल्मीकि, कश्यप
4: जी,
3: और
4: जोगी है सर,
3: जोगी भी हैं।
4: हाँ, और पाल पाल समाज से भी हैं सर,
3: पाल समाज के लोग भी हैं। तो इनमें सर्वाधिक कौन है? रोड?
4: हाँ रोड है सर, ज्यादा गांव में।
3: कौन कौन से गोत्र के हैं
4: सर? गोत्र तो कांगर गोत्र है सर,
3: हाँ,
4: कैनवाल
3: कैनवाल,
4: सर, टामक,
3: तामक,
4: मैला।
3: महले।
4: हाँ जी
3: चलिए
4: बस
3: बहुत बढ़िया। और इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए इससे पहले कि भारत जी अगला सवाल लेकर के आए, आपके गांव में कोई पुरानी चौपाल बची हुई है क्या? गौणी पुरानी सी कोई
4: पुराने चौपाल है सर,
3: जिसके बारे में कहे थे भाई अंग्रेजों के राज में बनी थी, इसके इसका ढांचा ऐसा है, हमने बचाकर रख रखा।
4: पुरानी चौपाल है सर, वो भी 1995 के आसपास की बनी हुई है सर, 90-95 की।
3: 1995 ने नहीं, पुराना कहते 1995 तो नवा है।
4: अच्छा नहीं, उससे पुरानी नहीं है सर।
3: अच्छा चलिए भारत जी आप अपना सवाल पूछ लें, फिर मैं आगे अगले अगले चरण में दोबारा से कुछ बातें करूंगा इनसे। और गुरविंदर जी एक क्षण, भारत जी एक क्षण रुकिएगा, गुरविंदर जी प्रिंस जी, प्रिंस जी अभी भी आज भी प्रिंस जी जो हैं वो सही फॉर्मेट में नहीं जुड़े, रोटेशन के साथ नहीं जुड़े, इसके लिए उत्तरदायी आप हो ये। चलिए भारत जी।
0: जी प्रिंस जी आपका एक बार पुनः स्वागत है और अभिनंदन है, आपके जो उत्तर आए हैं और प्रश्नों के और वो हम ने सुन लिए और हम चाहते हैं कि आप विस्तार में बताएं, क्योंकि हम आज आपको आपके गांव के लिए जो भी आपने कार्य किया है वो सुनने के लिए आए हैं। आप एक युवा सरपंच है, कितने साल से आप सरपंच है और ऐसा कौन सा काम आपने अपने गांव में किया, क्योंकि जहां तक यूनुसपुर गांव का सवाल है जीटी रोड से लगता हुआ गांव है, क्योंकि जब जीटी रोड के आसपास आसपास के गांव होते हैं तो वो थोड़े से ज्यादा उन्नत होते हैं। आपके गांव में आपने कौन सा ऐसा काम किया जो पिछले पंचायतों ने नहीं किया था, या आगे करने वाली क्या सोच है जो पहले नहीं हुआ वो अब होने वाला है? क्या आपके गांव में खेल के मैदान है? किस तरीके से आप युवाओं से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप खुद युवा हैं, तो विस्तार में बताइए, हम आपको सुनना चाहते हैं। जी प्रिंस जी।
4: सर मेरे गांव में खेल स्टेडियम पहले था, पिछली पंचायत ने बनवाया था, तो मैंने अभी वहां पे, हाँ जी वो 4 एकड़ का सर।
3: अच्छा
4: वो जो 10 से 15 कार्यकाल में बना था सर।
3: हालत क्या है उसकी अभी?
4: सर हालत तो ठीक है, मैं वहां आप साफ सफाई वगैरह कराता हूँ, जेसीबी से भी कराता हूँ, जो मेरे गांव में लेबर वाले उनसे भी करवाता हूँ सर, राउंड वगैरह स्प्रे भी करवाता हूँ। अभी मैंने वहाँ ट्यूल भी लगवाया सर, हैंड पंप पानी पीने के लिए, वहाँ बच्चे परेशान होते थे खेलने वाले।
3: कितने बच्चे होते हैं सुबह शाम वहाँ?
4: सर छुट्टी वाले दिन तो ज्यादा हो जाते हैं, संडे को तो आस पास के गाँव वाले खेलने के लिए आते हैं सर आपस में।
3: अच्छा
4: जी जी सर। वैसे शाम को सर जी
3: आज आज मंगलवार है, जनसान्य में आज हूँ तो कितने
4: दे खेल दे? 10-12 बच्चे खेलते मिल ही जाएंगे सर।
3: अच्छा 10-12 लोग ही होते
4: हैं। हाँ सर संडे को तो बताऊंगे, संडे को जो अपना बच्चे बाहर जॉब वगैरह करते हैं ना, अपने काम पे जाते हैं मंडे टू सैटरडे, संडे को फिर खेलती हैं वो।
3: आपके गांव में ग्राम गौरव पट लगा हुआ है?
4: लगा है सर।
3: आपने कब उस पे निगाह मारी थी लास्ट टाइम?
4: मैंने सर कल ही, मैं तो उसके पास ही बैठा था, गौरव पट के पास ही।
3: साफ सुथरा है?
4: हाँ जी बिल्कुल साफ सुथरा।
3: तोड़ तोड़ तो नहीं दिया लोगों ने?
4: नहीं नहीं नहीं सर नहीं। अच्छा पत्थर लग रहा सर, ब्लैक रंग का, उस पे लिख भी रहा, क्या क्या लिख रहा सर?
3: आस पास सफाई है उसके?
4: हाँ जी जी सर, बिल्कुल मेन सड़क के ऊपर है सर वो तो।
3: प्रिंस जी उसकी तस्वीर खींच के भेज।
0: जी जी प्रिंस जी, उसमें क्या क्या लिखा है
4: सर? वो तो नहीं पढ़ा मैंने अब तक। लगा सर मैं खत्म हुआ।
3: ये जो सरपंच साहब वो बनवाया गया और लिखवाया गया था ना, न्यू लिखवाया था?
4: नहीं सर, मैं पिछली पंचायत में लिखवाया था।
3: लिखवाया तो था महाराज, पढ़ना तो आपने भी था वो।
1: प्रीतम जी आपके गांव का गौरव गाथा है वो सरपंच साहब आपके गांव की गौरव गाथा है, आपके गांव में क्या क्या हुआ था वो तो आपने पढ़ना ही था।
4: चलो कोई इंसराज पढ़ेंगे जरूर।
3: अच्छा एक काम करना, मेरे मन में जो आ रहा है, अगर आप कर दोगे तो फिर वो हम ना राम राम हरियाणा में कल सुना देंगे सबको।
4: जी सर
3: मैं दे दूं एक प्रस्ताव भारत जी?
0: नहीं सर मेरे मन में तो एक ही प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं आया, प्लीज कैरी ऑन, तब तक मैं एक और प्रश्न तैयार करता हूँ।
3: हमें मेरा सुझाव ये है, प्रस्ताव है, मेरे इस प्रस्ताव को अगर आप स्वीकार करना चाहो तो कर लेना महाराज। मेरा ये कहना है कि भाई प्रोग्राम खत्म हो पाछे 5 बजे, एक बंदा ले साथ में, आपका सेक्रेटरी आ रहे हो तो सेक्रेटरी पकड़ो, नहीं तो कोई से छोड़ में लो, ले लो, और ग्राम पट के बगल में खड़े हो जाओ जाके,
4: ठीक है सर,
3: और उसको कहो भाई वीडियो बना और उसपे जो कुछ लिखा है ना सारा पढ़ के बोल दो, अच्छा वीडियो जिसमें उसका टेक्स्ट भी दिखे और आप भी दिखे। वो वीडियो अगर आप हमें पूरा पढ़ के भेज दोगे ना तो हम इस बात पे संतुष्ट हो जाएंगे कि भारत जी के प्रोग्राम में यूनिसपुर के सरपंच ये बताने आए थे कि जी ग्राम गौरव पढ़ दो बैठे तो था कल पढ़या को नहीं, आज कल नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लिया, और पढ़ा नहीं
4: कुर्सी रखी है वहां बैठ जाते हैं।
3: अब बस फिर आपने आज उसको वीडियो बना के भेजना है और अपनी आवाज में पढ़ के।
4: जरूर सर, कौन से नंबर पे सेंड करूं सर?
3: मेरा या तो स्टूडियो वाले नंबर पे भेज दो, ये 88।
4: हां ये मैंने अभी सेव किया था नंबर, ये सर ने नंबर बोला था,
3: हां
4: ये 88 16 904 904।
0: जी जी
3: हां ये स्टूडियो का नंबर है।
4: हाँ ये मैं नोट कर लिया था।
3: ये नंबर पे भी भेज सकते हो
0: 9826 00387। सर मुझे आज्ञा देंगे तो कुछ कमेंट्स आए हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगा। विकास बंसल लिखते हैं डॉक्टर
3: आज्ञा की आवश्यकता नहीं आप।
0: जी विकास बंसल कहते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जैसे ही प्रकट होते हैं ऐसा एहसास देता है कि जैसे मुर्दे में सांस चलने लगती है, बहुत बढ़िया। और करमबीर सिंह राम राम हरियाणा लिखते हैं,
3: ये विकास है ना, ये विकास बंसल है ना, मक्खन बहुत बढ़िया लगाता है, मतलब अमूल के बाद देश में सबसे बढ़िया मक्खन की फैक्ट्री हमारे विकास बंसल के पास।
0: नहीं नहीं एक और कमेंट है जो न्यूट्रलाइज कर देता है। विकास बंसल लिखते हैं आजकल के माध्यम से प्रोग्राम में जुड़ने के लिए ऑप्शन डिसेबल किया गया है क्या? यानी कि जो नंबर हमारा है 88 16 904 904, उनका कहना है क्या ये नंबर अब काम नहीं करता या काम में नहीं लाया जा रहा है, ये लिख रहे हैं विकास बंसल। तो हिसाब बराबर हो गया। चलिए प्रिंस जी आपसे
3: भारत जी आप मजे ले गए। चलो भाई सौरभ कहीं सुन रहे हैं तो देखो रेडियोग्रामो देखो क्या हुआ है, ये कहां सो गए, फोन नहीं चल रहा, वो रेडियोग्रामो थे स्टूडियो में नहीं दिखाई दे रहे, क्या हुआ है, मामला क्या है, इस ये विषय जांच क्या है, और ये जांच मेरे पे आगे पड़ती है सीधे तौर पे।
0: सर ये
3: धन्यवाद,
0: ये हम सब पे पड़ती है क्योंकि हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और अगर हमारी इस संचालन में कोई कमी रहती है तो वो कमी हमारी श्रोताओं की नहीं बल्कि वो हमारी है। मैं मानता हूँ वो मेरी कमी है, अगर मैं किसी शब्द पर दो शब्द ज्यादा भी बोलूं तो कई बार मुझे भी लगता है कि नहीं मेरे शब्द ज्यादा हो रहे हैं। प्रिंस जी से मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने गांव में बच्चियों के लिए क्या आपने कोई नया कार्य किया है या आपने आज तक क्या किया है लड़कियों के लिए? हाँ, खासकर
4: सर किया सर कि मैं ना आए पर ईयर वो जो ये सिलाई सेंटर होता है ना सर वो खुलवाता हूँ उनके लिए, वो महीना 40 दिन चलता है सर जिसमें अपना वो सिलाई वगैरह काम सीखते हैं, ब्यूटी से काम सीखते हैं सर, वो खुलवाता हूँ सर।
3: चलिए बहुत बढ़िया
0: प्रीतम जी,
4: सिलाई सेंटर ब्यूटी एक दो काम और सिखाते हैं सर, उसमें क्या क्या सिखाते हैं ये दो तो मुझे पता है।
0: प्रीतम जी
1: हाँ सर, मेरा सरपंच साहब जी आपने गांव में युवा बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी है आपके गांव में?
4: सर मेरे ई लाइब्रेरी के प्रस्ताव दिया था तो मेरा सर महिला संस्कृति केंद्र पास हो गया है, वो MSK
3: बन गया।
4: हाँ सर बन गया, वो सिर्फ सामान नहीं आया सर, बाकी जो खर्चा था वो कार्य था, जैसे छत पे टाइल थी, फ्लोर टाइल थी, पंखा था, वो लग गया सर सब कुछ।
3: अब प्रिंस भाई ये बताओ कि आपके यहाँ महिला सांस्कृतिक केंद्र पर काम सामान थोड़ा आना बाकी होगा लेकिन मोटा मोटा काम हो गया, ये महिला सांस्कृतिक
4: केंद्र पेंडिंग है।
3: हाँ ये जो महिला सांस्कृतिक केंद्र सरकार बना रही है बहुत सारे गांवों में, इसमें होगा क्या, आपको क्या समझ में आया महिला सांस्कृतिक केंद्र क्या है, क्यों है, इसमें क्या होने वाला है, आपको क्या समझ में आया ये बता दीजिए।
4: सर ये तो कभी जय साहब ने बताया नहीं हमें, बस ये बोला मैं इन संस्कृति के अंदर खुलेगा, प्रस्ताव दे दो और जगह दे दो, कहाँ पे आप खोलना चाहते हो।
3: अच्छा मतलब
4: हाँ जी
3: यो जय कौन है आपका?
4: सुशील जी हैं जी
1: सरपंच साहब, आप
4: जी जी
1: गांव
4: सर
1: के प्रधान हो, मुखिया हो, प्रधानमंत्री हो, भगवान हो
4: जी
1: एक किस्म से, गांव के पहले व्यक्ति हो मेरे हिसाब से आपके गांव के, कि सारा
3: प्रथम
1: आप
3: नागरिक
1: प्रथम नागरिक है गांव के सर। लेकिन इन्होंने ये नहीं पता जो बना बन रहा है उसका फायदे क्या क्या होंगे, तो गांव वालों को कैसे पता चलेगा। मैं आपने
4: सर
1: पहले जय
3: उसमें
1: हिसाब से पूछना है। जी
3: इसमें
1: जी
3: इसमें इसमें प्रीतम जी सरपंच साहब की क्लास तो आपने ले ली, जेई की भी क्लास लेनी
4: जी
3: पड़े।
1: हाँ
4: जी
1: सर,
4: जी
1: जेई का भी दायित्व तो बनता है गांव में बताने का।
4: जी
3: चलो जेई का नंबर बोलो, अभी जेई को लाइन पे लेते हैं। जेई का नंबर है आपके पास?
4: हाँ जी
3: अभी
4: जी
3: जबान
4: सर, है
3: नहीं याद है तो दो।
4: मैं फोन से देखता हूँ सर। सर ये 81 600 816 85
3: एट फाइव
0: 82
3: एट टू
4: 985
3: नाम क्या है?
4: सुशील
3: 81 68 58 29 25 पचासी
4: जी जी सर जी जी
3: चलिए हम कोशिश करते हैं, यूनिसपुर जिस अभियंता के अंतर्गत आता है उन्हीं को आज पकड़े और उन्हीं के मुंह से सुने कि भाई ये जो महिला सांस्कृतिक केंद्र बनवाने जा रहे हो इसका मतलब ही बता दो गांव वालों को, सरपंच को तो आपने बताया नहीं, हमारे हरियाणा के बाकी लोगों को बता दिया जाए। मैं कोशिश करता हूँ मेरी ओर से कनेक्ट करने की। और इसके अलावा तालाबों की क्या स्थिति है आपके यहाँ?
4: सर तालाब मेरे गांव में एक पशु तालाब है, उसकी चार दुआरी सर अच्छी हो रखी है, ट्यूबवेल भी है सर वहां पे, और जो गांव का पानी आता है गंदा पानी नाली वो सर पाइप कुंड में जाता है, उसकी भी व्यवस्था अच्छी है सर, अभी साफ सफाई भी करवा रहे हैं सर उसकी।
1: सरपंच साहब, गांव में कोई भी तालाब होता, पुराना तालाब है, उनका नाम होता है। आपके गांव में तालाबों के का कोई नाम रख रखे हैं क्या? क्या नाम है?
4: सर जो पहले पुराना तालाब था उसका नाम तो सर पशु तालाब है और ये खाई पोंड है।
1: नहीं, ये पोंड वाली जो हमारे बुजुर्ग थे उस टाइम पोंड सिस्टम और ये नहीं होता था, ऐसे जैसे मंदिर के नाम हो गया, किसी संत महात्मा के नाम हो गया, ऐसे नाम होते थे। तो
4: बताऊं क्या
1: आपके
4: बात
1: गांव में
4: है
1: भी कोई
4: सर,
1: ऐसा
4: पिछले
1: तालाब है?
4: जो पुराना तालाब है उसको पशु तालाब बोलते हैं सर, जैसे जोड़ बोल देते हैं, और जो पीछे अभी पिछले सरपंच ने बनाया था फाइव पॉइंट, उसको फाइव पॉइंट से नाम से बोलते हैं सर, पांच तालाब है सर वो खट्टे फाइव
3: पर मेरे
4: पॉइंट।
3: से लिखवा लो सरपंच साहब, गांव में
4: जी
3: जाओ, गांव में सबसे बड़ा बड़ी उम्र का मानस कौन है?
0: जी
4: गांव में तो हमारे बाबे ताऊ तो यही है जी। जी
3: आपके बब्बे जो हैं अभी मौजूद,
4: जी जी
3: सबसे बड़ा जोन से लगता है उसका नाम बताओ।
4: सबसे बड़ा किसका नाम बताऊं क्या अपना, सुरताराम लिख लो।
3: लिख लिया मैंने सुरताराम। अब आप
4: जी
3: सुरते
4: जी
3: बाबे तो रजाइयो लाइव पीछे,
4: जी जी सर
3: और सुरते बाबे तो पूछियो कि बाबा यू जो जोड़ है जिसने हम फाइव पॉइंट कवे हैं, अरे इसने जोड़ से
4: जी
3: ना पशु तालाब कवे हैं, इनके
4: जी
3: कोई पुराने नाम होंगे, हर गांव के हर जोहड़ का सरोवर का कोई ना कोई परंपरागत नाम है। जो ठीक कहा प्रीतम जी ने, बहुत
4: सर
3: बार वो जो नाम है वो किसी ना किसी किसी बाबा के किसी साधु संत कोई रहे हो कोई
4: जी जी
3: गांव के
4: सर
3: किसी बुजुर्ग के नाम पे होता है, तो अपने गांव के तालाबों के परंपरागत नाम उनको भूलने नहीं देना चाहिए, उनको उसी से जोड़ के रखो। फाइव पॉइंट तो उसकी एक व्यवस्था का नाम है, ठीक
4: चलो
3: है
4: सर,
3: ना?
4: मैं पूछूंगा जरूर उनसे जाके
3: हाँ
4: आज।
3: ये बड़े बुजुर्गों के पास जो चीजें यादगारी पड़ी है या संभालनी भी तो पड़ेगी, न्यू थोड़ी छोटी जावे
4: जी
3: हम।
4: जी सर ठीक
3: जी भारत जी का सवाल।
0: जी, बस मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ कि सरपंच जी जब सरपंच बने तो उनको अपने गांव के बारे में, अपने काम के बारे में जानकारी तो बहुत सारी होनी चाहिए थी। खैर ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम सरपंच बनते हैं तो हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, पर बेसिक जानकारी ये जरूरी है कि जब वो गांव के मुखिया बने हैं तो उनको अपने गांव में जो सुख सुविधा है वो देनी चाहिए। मैं नेट से देख रहा था, उसमें लिखा है कि यहाँ के निवासी गेहूं, धान और मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। क्या आपके गांव में सब्जियों की खेती भी होती है? अगर होती है तो कौन कौन सी होती है?
4: सर सब्जियों की नहीं होती मेरे गांव में, यही है बस गेहूं और जीरी होती है सर।
0: जी जी तो आप मुझे
4: ये सब्जी का सर ये मंडी दूर है ना ज्यादा?
0: जी जी और
4: मंडी दूर है सर कमाड़ी पर भी।
0: ठीक है हो सकता है कि नेट ने जो जानकारी वो सही ना दी हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास पानी की व्यवस्था क्या है और पानी कितना साफ सुथरा है? क्या नल से जल हर परिवार हर घर तक पहुंचता है या कहीं पर पानी जाया होता है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचता है? इसके बारे में आपने क्या किया है?
4: सर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी पानी की, सर मैंने गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, मैंने पूरे गांव में नई पाइपलाइन बिछवा दी, बिल्कुल
0: जी
4: DWC पाइप नई बिल्कुल बिछवा दिए और एक नया ट्यूबवेल भी लगवाया सर,
0: ठीक है
4: जो बड़ा ट्यूबवेल होता है 700-750 फुट पे लगता है। और सर मेरे गांव के एक एस्टिमेटर जाया हुआ है पंचकुला हेड ऑफिस में पानी की टंकी का, वो
0: जी
4: भी सर बनेगी मेरे गांव में।
0: चलिए अच्छी बात
1: सरपंच साहब, मेरा आपसे सवाल है,
4: जी
1: आपने जो ट्यूबवेल लगाया क्या आपकी तरफ नहर का पानी और जो जल घर से पानी गांव में सप्लाई नहीं होता?
4: जल घर से होता है सर। पहले सर जो पहले ट्यूबवेल था ना, पुराना ट्यूबवेल था वो सर 2006-07 में लगा था और वो सर ट्यूबवेल लगा था 300 फुट पे सर, जो उसके पानी सैंपल लेके जाते थे ना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, वो सैंपल फेल हो जाते सर उसके, और पुरानी लाइन थी सर पत्थर वाली वो कमजोर हो गई थी।
1: देखो अभी आपको हरियाणा के दक्षिण में सुना जा रहा है अपना रेडियो और नारनौल में, हमारे भी 700 फुट नीचे पानी होता है, अगर नीचे के बोर करवाएंगे तो हमारे लगते हुए 600-700 फुट नीचे पानी, आपके उधर पानी की आपने हमारे यहाँ भी जैसे जल घर होते हैं उनसे गांव में सप्लाई होती है, जहाँ जरूरत होती है ज्यादा, जहाँ जल घर नहीं बना होता वहां नल से पानी बोर से पानी जाता है। आपकी तरफ ये बोर से पानी जाने का क्या कारण है कि आपके जल घर से नहीं जा रहा पानी?
4: सर मैं जलघर से जा रहा पानी तो
0: यानी कह रहे हैं जलघर से जा रहे
4: जी
3: नहरी,
4: जी
3: सर नहरी पानी आप नहरी पानी नहीं पिलाते, आप नलकूप का पानी पिलाते हैं, ये तो अंतर है ना?
4: हाँ जी
1: नहरी पानी क्यों नहीं पिला रहे
4: सर? नहरी पानी दूर है ना, नहर दूर है ज्यादा,
3: ये बात समझ में आती है मेरे भारत जी।
0: जी सर
4: नहर मेरे गाँव से सर 5-6 किलोमीटर दूर है।
3: हमारे साथ जो कनिष्ठ अभियंता हैं जेई सुशील कुमार जो यूनिसपुर भी देखते हैं वो जुड़ गए अभी। सुशील भाई आवाज आ रही है मेरी?
5: सर आ रही है।
3: सुनील भाई ना, सुशील भाई ये बताइए कि महिला सांस्कृतिक केंद्र एक यूनिसपुर में भी मंजूर हुआ है, आपके आपके क्षेत्राधिकार में और कितने बन रहे हैं प्रस्तावित हैं?
5: सर मेरे अधिकार क्षेत्र में 2 और बने हैं सर, मतलब इसके अलावा ये 2 और
3: गांव के
5: मतलब टोटल 3 बने हैं।
3: गांव का नाम बताइए दूसरे?
5: एक तो नीलोखेड़ी ग्रामीण में बना है सर।
3: नीलोखेड़ी ग्रामीण?
5: हाँ जी सर। एक श्यामगढ़ में बना है सर।
3: और ये पूरे हो गए?
5: हाँ जी सर ये पूरे हो गए।
3: और इनका इसमें कितनी कसर है ये शाम यूनिसपुर वाले में?
5: यूनिसपुर वाले में सर बन गया, कम्प्लीट हो गया, सिर्फ इनका सामान आना बाकी है सर।
3: बाकी
5: तो सामान आ गया है।
3: हाँ
5: इसमें सामान आना बाकी है सर। जो
3: अभी आपने केवल एक चीज साफ करनी है, हम पूछ रहे थे यूनिसपुर के सरपंच से कि भाई ये महिला सांस्कृतिक केंद्र के सौदा है, के करोगे इसमें, के बनेगा, के काटोगे, तो आप ये बताइए सामान्य लोगों की जानकारी के लिए कि महिला सांस्कृतिक केंद्र नाम से जो जगह हमने गांवों में विकसित करनी शुरू की हैं वो क्या हैं, वहां क्या क्या सुविधाएं हम देने वाले हैं और उनसे सरकार या ग्रामीणों सरकार के उम्मीद क्या है और ग्रामीणों क्या लाभ होने वाला है, क्या है अवधारणा क्या है?
5: सर मेन तो इसी बेसिकली पर्पज ये है कि भाई जो महिला संस्कृत केंद्र बन रहे हैं,
3: हाँ,
5: जो हमारा जो महिलाओं के लिए भाई एक जगह पे कहीं बैठना जो पल्ले बनी होती है पुराने टाइमों में
3: जी,
5: वहाँ जेंट्स तो बैठ जाते हैं लेकिन लेडीज के बैठने के लिए जगह नहीं होती,
3: हाँ हाँ।
5: तो ये पर्पज ये है कि भाई हमारी जो महिलाएं हैं किसी एक जगह बैठ के अपने जो भी विचार हैं वो साझा कर सके, वहां पे जाके महिलाओं को जो सरकार की स्कीम में चल रही है उनके बारे में बताया जा सके, और वहां पे इस तरह का भी जो सरकार ने प्रोवाइड किया है कि महिलाएं अपने जो कार्यक्रम है, कोई गाने बजाने का कार्यक्रम, वो भी वहाँ जाके कर सकते हैं।
3: सत्संग हो सकता है?
5: हाँ जी, सत्संग हो सकता है, और भी कोई एक्टिविटी, गाने बजाने का, और ये सारी चीजें वहाँ पे महिलाएं कर सकती हैं। और ये भी है कि भाई कोई महिला है जो भाई चौपाल में या कहीं जाके बोल नहीं सकती, लेकिन जहाँ पे महिला महिला है वहाँ जाके वो अपनी मतलब खुले तरीके से अपने मतलब मन के विचार रख सकती है। सर,
3: तो शामगढ़ और नीलोखेड़ी ग्रामीण के जो आपके महिला सांस्कृतिक केंद्र बने हैं, यहाँ पर जो सामान दिया गया है आपकी जानकारी में होगा, क्या क्या सामान दे दिया गया है इनको मोटे तौर पर?
5: इसमें सर जो कुछ तो कुर्सियां हैं सर, ढोलक है जी, चीजें वगैरह हैं, और सर अलमारी है, और कई तरह मेरे को पूरा सर उसमें जैसे मान लो मुझे याद नहीं है, तो ये सामान सर मोटा मोटा जो है वो है जी।
3: कुर्सियां हैं, ढोलक है, मंजीरे हैं, और
5: महिलाओं के लिए वाटर कूलर है, जैसे गर्मियों में
3: पानी की व्यवस्था है,
5: वो उसकी व्यवस्था है सर।
3: और इसमें एसी वेसी लगाएंगे नहीं आप लोगों ने?
5: नहीं, एसी का प्रोविजन,
3: गैर एसी हैं ये ठिकाने।
5: हाँ जी सर।
3: तो ये जो इनके तैयार हो गए, कंप्लीट हो गए, इन इन इनमें इनका उपयोग करना शुरू कर दिया है क्या लोगों ने?
5: हाँ जी सर, होते हैं।
3: चलिए
0: सुशील
3: भारत जी, आपके
0: जी वाले जी, सुशील जी आपको मेरी आवाज मिल रही है?
5: हाँ जी सर, हाँ जी मिल रही है।
0: सुशील जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये हरियाणा सरकार की बहुत ही बढ़िया कोशिश है कि महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए, ऐसा केंद्र बनाया जाए जहाँ पर वो अपनी मन की बात कर सकें, जहाँ पर वो खुल के अपने विचारों को प्रधान आपस में एक्सचेंज कर सकें। पर जब ये योजना बनती है, इसमें मेरे हिसाब से कम 5 या 6 महीने तो लगते होते होंगे कि प्रस्ताव आया, फिर सरकार के पास गया, फिर सेंक्शन आया, फिर काम शुरू हो गया, 1 साल में बनता होगा। तो जब ये योजना किसी गांव के लिए सेंक्शन होती है, क्या ग्राम जो पंचायत के मुखिया है, क्या वो इस योजना के साथ जुड़े नहीं होते हैं? अगर आपने इतनी सारी जानकारी दी है, अभी हमने यही सवाल ग्राम सरपंच से किया था, उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि इसका क्या उद्देश्य है। अगर ग्राम पंचायत को ही पता नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उसका बनाने का उद्देश्य क्या है, आप जरा विस्तार से बताएं।
3: ये,
0: क्या क्या
3: ये हमारे जी हमारे हमारे सरपंच में प्रिंस बाबू ने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया, बोले जी जे साहब ने न्यू का था प्रस्ताव दे दो, आपके तो बताया नहीं, न्यू के ऊपर काम चलेगा भाई जे साहब
0: जी। सुशील जी बताइए सर।
3: अच्छा,
5: ना बोलने के मारे शायद ऐसा बोल गया हो, तो सारी स्कीमों के बारे में पहले बताया जाता है।
3: अच्छा,
5: क्या होता है वो बिना जानकारी के तो प्रस्ताव ही नहीं देते सर कि क्या चीज होगी, क्या एक्टिविटी होगी, हर चीज उनको बताई जाती है, ब्रीफ की जाती है, उसके बाद ही ग्राम पंचायत प्रस्ताव देती है सर।
3: तो इसके ये जो महिला सांस्कृतिक केंद्र है, इनका बजट कोई फिक्स है या आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा भी हुआ है?
5: आवश्यकता के अनुसार है, मतलब कि जहाँ पे ग्राम पंचायत अगर बिल्डिंग दे देती है सर, तो उसमें जो रेनोवेशन का खर्चा है सिर्फ उतना ही है सर। मतलब जो उस बिल्डिंग को अगर 300 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है सर, 300 से मिनिमम जो एरिया चाहिए है वो 300 स्क्वायर फुट चाहिए सर इसमें एरिया।
3: अच्छा,
5: तो उसमें जो भी सिविल की मतलब की रहती है रिक्वायरमेंट सिविल के वर्क की, कोई खिड़की टूटी है वो रिपेयर कराने की, पेंट है जी, पेंट पुट्टी है, जो भी उसमें सिविल का काम होना, उसको मतलब पूरा बिल्डिंग को रेनोवेट करने में उतना पैसा रिक्वायर्ड, चलो एस्टिमेट लगता है।
3: अच्छा, ये यूनिसपुर के सरपंच कभी आपसे आके इन्होंने ये भी कहा कि जी मारा यू रह गया, यो भी करवा दो किसी डाल, कोई धक्का धुक्का करे कभी काम खातर?
5: हाँ जी सर, कई बार उसका उनका फोन भी आया मुझे कि भी मारी जी ये रहती है, मतलब जो एमएसके में ये खिड़की दरो, जैसे ठेकेदार जो था जी अंचित रैना है, जिसने आपका ट्रैक्टर उसका काम किया सर,
3: बस बढ़िया ठेकेदार का नाम ले दिया जमा कतई।
5: हाँ, हाँ। तो वो उन्होंने काम डिले किया, तो इनका बीच बीच में फोन भी आया सर कि भी ये काम रहता है, ये काम रहता है, ये
3: तो ऐसे ऐसे ठेकेदार को कहीं लटकाने टांगने का कोई प्रावधान नहीं है क्या
5: सर? वो डीवार के लिए उनको जैसे मतलब कहीं स्कीमों में लिखा, लेकिन फिर ऊपर से कार्रवाई जैसे एक्शन साहब।
3: हाँ, कहाँ कहाँ उस ठेकेदार ने गड़बड़ की है? यूनिसपुर के में ढिलाई की, मेरे मेरे निवास के मरम्मत में ढिलाई बरती, और कहाँ कहाँ गड़बड़ की?
5: एक दो काम और ले रखे थे सर, जैसे बिल्डिंगों के।
3: हाँ,
5: उसमें भी या रास्तों के, उसमें भी मतलब कि टाइम बीत जाने के बाद अगर काम करता है, मुझे डिले काम करता है,
3: अच्छा
5: काम भी अच्छे नहीं करता
3: भाई। ये तो
0: वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर, मैं इस वीरेंद्र सर मैं इस
3: हाँ बोलो बोलो भारत जी।
0: वीरेंद्र सर मैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे ही करता हूँ। जब हमारे हरियाणा में सरकारी जो हमारे ठेकेदार काम लेते हैं तो वो जब अधूरे छोड़ते हैं, क्या उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आगे उनको काम ना मिले या उनसे उसका हिसाब मांगा जाए? तो ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर तो हम यही देखते हैं।
3: देखिए भारत जी, जो कानूनी स्थिति है मैं उसका वर्णन करता हूँ
0: जी।
3: नियमों में प्रावधान है कि कोई जो ठेकेदार जब काम करता है ना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है
0: जी,
3: एक अनुबंध होता है
0: जी,
3: उसको किन शर्तों में किस पैमाने पर किस प्रकार से किस गुणवत्ता का काम करना है, उसी में ये भी प्रावधान होता है कि कितने समय में करेगा, उसी में ये भी प्रावधान होता है कि काम को अधूरा छोड़ेगा तो कितनी कैसी पेनल्टी लगेगी, उसी में काम की गुणवत्ता सही न होने पर पेनल्टी का प्रावधान भी होता है। और ये जो आखिरी शब्द जो इन्होंने प्रयोग कर दिया ना सुशील बाबू ने कि जी डी बार करना, आपने जो पूछा डी बार करना जब वो नियम तोड़ता है वार्निंग भी नहीं मानता, सुनवाई नहीं करता, तो अंततो गत्वा जो ठेके की कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती हैं, टेंडर की शर्तें होती हैं, उसके अनुसार ठेकेदारों को सख्त से सख्त दंड तो यही हो सकता है कि डी बार कर दो, आज के बाद तुम तो नहीं करोगे काम
0: जी, जी, जी, जी।
3: तो वो प्रावधान तो है, लेकिन इनका ये कहना है हमारे जेई का सुशील बाबू का कि इस पर्टिकुलर ठेकेदार को एक से ज्यादा बार कामों में गड़बड़ के कारण उसको डीबार करने के लिए लिखा गया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लेकिन हरकतें वास्तव में उसकी ऐसी हैं कि वो डीबार हो ही जाना चाहिए। मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं, मैं एक भुक्तभोगी के नाते आपसे बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो काम होना था, जिस काम का जिक्र किया इन्होंने, वो जिस दिन वो आया तो उसने कहा सर 15 दिन में कर दूंगा, 14 दिन बल्कि, और 6 महीने के से ज्यादा हो गया होगा भाई सुशील जी।
5: यस सर।
3: और इसमें कितने दिन में करना था इसको काम, टर्म्स क्या थी, टर्म्स
5: एंड कंडीशन? इसमें सर इसको मतलब 2 या 3 महीने का, 2.5 महीने का ही टाइम था सर करने का।
3: 2 से 3 महीने शायद रहा होगा।
5: यस सर 3 महीने सर।
3: और भाई ने काम अभी भी कम से कम मेरी संतुष्टि, और ये खुद जेई बता रहे हैं इनकी भी संतुष्टि कहाँ हुई होगी जब मेरी नहीं हुई, तो काम की गुणवत्ता में भी उस पर सवाल है, और काम की गति इसके कारण दिक्कतें हैं। और ऐसा नहीं है भारत जी, दंडात्मक प्रावधान नहीं है इस मामले में, सुनिश्चित करेंगे कि अगर इसने गड़बड़ मल्टीपल जगह करी है तो फिर ऐसे ठेकेदार की तो विदाई हो जानी चाहिए।
0: चलिए
3: मैं ये समझता
0: हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम चलते हैं यूनुसपुर गांव।
5: धन्यवाद जी।
0: मैं यूनुसपुर गांव एक बार फिर चलता हूँ। मैं प्रिंस जी से जानना चाहता हूँ इस गाँव का नाम यूनुसपुर कैसे पड़ा।
6: सर ये तो पुरानी बात है, इसका तो हमें पता नहीं।
0: फिर आप वो बात बताइए जो आपको पता है प्रिंस जी, कुछ भी, जो भी आपको जानकारी हो बता दीजिए।
6: सर हमने जन्म लिया तो ये तुम्हारा गांव यूनुसपुर है
0: प्रिंस जी,
6: ये तो पता नहीं किस कारण से यूनुसपुर टिका।
0: प्रिंस जी
3: मैं एक प्रस्ताव,
0: प्रिंस जी जब हम पढ़ते हैं, हम जिस भी युग में जन्म लेते हैं हमारा इतिहास हमें बहुत सारी जानकारी देता है, और आप एक सामान्य व्यक्ति से अलग है, आप गांव के प्रथम व्यक्ति है, आपको चाहे अनचाहे हर किसी बात की जानकारी रखनी पड़ेगी। आपके मुख से ये जवाब, ये उत्तर अगर आए कि मनु पता नहीं है तो ये यो काम यो नहीं चल सकता। तो इस तरीके से हम सीखते हैं हर
6: जी,
0: दिन
6: जी,
0: हम हर दिन सीखते हैं कि हमें जिंदगी को आगे किस दृष्टिकोण से देखना होगा। हमारे साथ गुरविंदर जी है। गुरविंदर जी
6: आप
0: जी जी गुरविंदर जी
6: आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा
7: है। सुभाष साहब एक जीपीडीपी होती है ग्राम पंचायत विकास योजना, क्या आपकी पंचायत में बनाते हैं वो?
6: हाँ बनाते हैं सर।
7: अच्छा क्या क्या करते हैं उसमें?
6: सर ये अपने गांव की कार्य करते हैं सर उसमें।
7: है
6: गांव की कार्य करते हैं सर?
7: नहीं गांव के कार्य तो करते हैं, उसके लिए ग्राम सभा होती है तो उसमें।
6: हाँ जी ग्राम सभा होती है सर।
7: कितने लोग आते हैं उसमें?
6: सर गांव में मुनियादी करवाते हैं उसमें आए जाते हैं सर यही 150 के आसपास सर, जैसे 60-70 आदमी जाते हैं सर, 30-40 लेडीज जा जाती हैं।
3: आखिरी ग्राम सभा, आखिरी ग्राम सभा आपकी कब हुई थी?
6: सर मेरी आखिरी ग्राम सभा ये जो पंचायत की जमीन की बोल लिया इससे पहले हुई थी सर।
3: उसमें कितने के लोग आए थे?
6: उसमें सर आए थे 150 के आसपास सर।
3: और जो पंचायत की जमीन है आपके पास वो कितनी है?
6: मेरे गांव में सर 142 एकड़ जमीन है।
3: 142 एकड़ से आपको सालाना कितनी आमदनी होती है?
6: सर ये पट्टे हो जाती है सर 60-70 लाख रुपए सर।
3: पिछले साल की जो 60-70 लाख रुपए की आपकी अपनी आमदनी है पंचायत की
6: जी।
3: जिसके लिए आपको ना मुख्यमंत्री की तरफ देखना, ना मंत्री महोदय की तरफ देखना, ना सांसद से पूछना, आपकी अपनी पंचायत की आमदनी है, अपनी जमीन से आपने वो पैसा कमाया है और उसको लगाना भी गांव के विकास पर है। तो पिछले 3 वर्षों में 60 औसत मान लेते हैं भारत जी, 60 × 3 6 × 18 1 करोड़।
6: सर अभी सर बताऊं क्या बात, तुझे फर्स्ट जिस फर्स्ट ईयर में बोली हुई थी ना उस साल सर 42 लाख रुपए की हुई थी। अच्छा, फिर ये अपने ये गवर्नमेंट के 42, फिर उसके बाद सर ये प्रावधान है भी जैसे अगले साल फिर दोबारा बोली होगी ना तो 15% बढ़ के बोली देंगे, उससे कम छोड़ नहीं सकते। यदि पिछली बार कोई प्लॉट पर 5 लाख का तो उसको 4 98 में 4 90 में छोड़ सके, 5 लाख से ऊपर 5,000 रख लो, 10,000 रख लो, उससे ऊपर ही बोली चलती है सर।
3: इसका इसको सिंपल करते हैं, सरल करते हैं, पहले साल 42 लाख, उससे उसके बाद अगले साल
6: फिर 52 की हुई थी सर,
3: 52, फिर उससे अगले साल
6: 62 बूस्ट की हो रही है सर।
3: अच्छा, मोटे तौर पे आप ये देख लो इसको कि 1.5 करोड़ से ऊपर अब तक आपको अपने साधनों से मिले
6: जी,
3: इसमें से आपने इसका ज्यादातर उपयोग किस चीज पे किया, आपने कहाँ लगाया ये पैसा?
6: सर मैंने गलियों में लगाया, रास्तों पे लगाया सर, कच्चे खेत के रास्ते तो पक्के करे हैं सर, और गांव में जो ये जो प्लॉट होते हैं ना सर जिस जमीन बोल लेते सर उनमें जैसे स्टार्टर ग्रिप बिजली का बिल केवल ये कंप्यूटर बोर्ड वगैरह सर लगाते हैं खेतों में ये। अच्छा। सर जी जी सर,
3: चलिए तो
6: फंड सर बचे भी हो या सर पूरे ये ना सर पूरे साल में पूरा फंड लगता नहीं सर, बच जाता है जी।
3: मतलब आप आपकी सरकार ऐसी सरकार है जिस सरकार के पास मतलब शिवनिसपुर की ग्राम सरकार भारत जी सुन लो
0: जी सर,
3: ऐसी सरकार है जो पैसा नहीं खर्च कर पाती अपना दरा रहे जे
6: नहीं लगाते हैं सर, जहाँ जुट तो घर में ही लगाते हैं ना।
3: नहीं नहीं महाराज मैं तो नहीं बता रहा भाई, ऐसी भी सरकार हमारे दो रहे यूनिसपुर वाली, इन पे पीसे की कमी को नहीं टोटा को नहीं भेजेगा
6: जी जी।
3: चलिए तो बढ़िया,
6: चार दुआरी करी है सर, 2 ट्यूब भी लगाए हैं सर की बार खेतों में।
3: अच्छा
6: जी जी सर,
3: हरियाली की क्या स्थिति है आपके यहाँ, वन्य क्षेत्र कैसा है, माने पेड़ पौधे लगाने पे कितना जोर है आप लोगों का?
6: मेरे गांव में तो अच्छा सर, मेरे गांव जंगल भी है सर 7-8 किलो का,
3: 7-8 एकड़ में जंगल भी है
6: जी जी सर, 7-8 एकड़ में से सर यही सर 3-4 एकड़ में ये प्लाट कटेंगे सर, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में वो सर मेरा नाम गया, मैंने उनमें किला नंबर दे रखे हैं 3-4 एकड़ में।
3: तो ये अच्छा
6: जी जी,
3: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्लॉट कटने वाले
6: हैं, 200 गज के वर्ग प्लॉट मिलते हैं सर।
3: ठीक ठीक ठीक
6: जी सर, वो सीएम सर से वो आवंटन पत्र भी मिल गया सर उनके, सिर्फ वो रजिस्ट्री रह रही है सर उनकी होनी अभी।
3: तो कुल मिला के पैसे के मामले में तो आप लगभग आत्मनिर्भर सी पंचायत हो
6: जी जी सर।
3: ये आपका पैसा जो है जो अपनी आमदनी वाला पैसा है इसका उपयोग और बढ़िया ढंग से हो, इसमें हम हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी समय अपने अपने सचिव के साथ और अपने कुछ मित्रों के साथ नीलोखेड़ी आए, संस्थान में आए, और यहाँ के हमारे जो विशेषज्ञ मित्र हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो इस पैसे का हालांकि गाना सा ज्ञान दिया नहीं जानता सरपंचों है ना कोई लेकर राजी, पर फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम इस विषय पर आपको कुछ ना कुछ कुछ न कुछ ऐसी राह दिखाएंगे जिससे आप
6: जरूर आऊंगा
3: कि आप अपने पैसे का इन साधनों का उपयोग करें। भारत जी
0: जैसे इन्होंने
6: जरूर आऊंगा,
0: जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास कुछ ऐसे फंड्स हैं जो उस साल में खर्च नहीं किए गए गांव में, अगर एक पंचायत की आमदनी फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए है तो क्या उसकी गांव के लिए एफडी होती है, क्या उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल होता है? प्रिंस जी
6: सर हमारा सर ना ग्राम पंचायत का अकाउंट होता है
0: जी,
6: ग्राम पंचायत यूनिट प्रोग्राम
0: जी,
6: और वहाँ पे सर हम जैसे कोई पेमेंट करने सरपंच और सेक्रेटरी के साइन होते हैं, प्रस्ताव लिखते हैं सर, पंचायत मेंबर के साइन होते हैं, जो बिल होता है बिल पे सर जेई के साइन होते हैं, एसडीओ सर के साइन होते हैं।
0: यानी कि अगर पैसा खर्च नहीं हुआ तो उसको एफडी में रखा जा सकता है ताकि उसमें वहाँ पे वृद्धि हो जाए। आपके ग्राम सचिव कौन है?
6: जी जी
0: आपके ग्राम सचिव कौन?
6: मेरे सुनील सुनील सुनील सर है सर।
0: सुनील जी ये किस किस गाँव को देखते हैं?
6: सर ये मेरे गाँव में है और अंजल थड़ी गाँव में है, और मुझे सर दो दो ही पंचायत है इनके पास सर।
0: कब से वो आपके साथ?
6: अंजल थड़ी मेरे साथ सर अभी चार पांच तीन चार महीने से है सर, वो सेक्टर चेंज होते रहते हैं सर ग्राम सचिव।
0: जी जी जब से आपके आज के ग्राम सचिव हैं उन्होंने आपके लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई या किस तरीके से आप दोनों ने मिलके गांव के लिए कुछ अलग से काम किया?
6: सर अभी तो अपना कर ही रहे हैं ये गलियां गुड़िया जो मैं बोलता हूँ वो अपना प्रस्ताव डाल देते हैं।
0: ठीक है
6: मैं अपना पंचायत ग्राम सभा में बोलते हैं सर बी एस एस इस गली का निर्माण कराना है और जो पंचायत मेंबर सब उनके साइन कराते हैं
0: जी।
3: गांव की समस्याएं गांव के सवालों यूनिसपुर की पंचायत वहां के सरपंच हमारे जो यहाँ के विधायक हैं भगवान दास जी उनके पास आप जाते रहते हैं कि नहीं?
6: हाँ जाते हैं सर जाते प्रोग्राम में जाते हैं। ये सर आए थे मनोहर लाल जी आए थे वहां भी गए थे सर प्रोग्राम में।
3: चलिए बहुत बढ़िया। सरकार से
6: ये लाइब्रेरी के सर मैंने अभी प्रस्ताव भी दिया।
3: हाँ वैसे एक बात कहूं आपको मैं
6: जी सर
3: आपको ई लाइब्रेरी के लिए तो पूछने की जरूरत ही नहीं, आप अपने पंचायत वाले फंड में से ना कर लो इस्तेमाल, ई लाइब्रेरी बना लो उसमें क्यों बांट देखो। कारण है उसका कि सरकार ने तीन तीन चीजें दी थी, तीन तीन विकल्प दिए थे कि आप अपने गांव में या तो ई लाइब्रेरी बनवा लो या महिला सांस्कृतिक केंद्र बनवा लो या इंडोर जिम बनवा लो, यही था ना?
6: हाँ जी।
3: आपको महिला सांस्कृतिक केंद्र तो वहां से मिल गया तो अब आपको आपको प्राथमिकता के आधार पर लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, आपका नंबर लेट आएगा, बाट देखनी पड़ेगी। अब बाट क्या देखो?
6: मैं पंचायत फंड से बनाऊंगा सर।
3: हाँ अच्छा
6: आपकी विजिट कराऊंगा सर।
3: हाँ मैं आ जाऊंगा जब आप कहोगे, मैं तो बहुत पड़ोस में रहता हूँ। और कितने किलोमीटर पड़ता है यूनिसपुर यहाँ से नीलूखेड़ी से?
6: नीलूखेड़ी सर ये 8 किलोमीटर है सर।
0: ठीक है
3: बस आप तो तड़के मेरे तो रचा पी सको और नाश्ता करण मैं यूनिसपुर आ सकूं।
6: जी जी सर।
0: प्रीतम जी
3: जी चलिए जी प्रीतम जी।
1: सर मैं तो यही वीरेंद्र सर ने सवाल पूछ लिया, मैं तो ये कह रहा था ये इस पंचायत के पास इतना फंड है ई लाइब्रेरी और अगर इनकी एजुकेशन स्कूल में नहीं है शिक्षा का स्तर तो उसमें को भी उठाने के लिए ये अध्यापकों का बंदोबस्त भी कर सकते हैं, अगर स्कूल में अध्यापक नहीं है तो इनके ऊपर इनका जो फंड बचता है ये फंड बचा के उसकी एफडी ना करें, ये भविष्य को सुधारे बच्चों का। सर मैं सरपंच साहब से यही बात करना चाहता हूँ।
3: वो एफडी वाली बात है ना प्रीतम जी, एफडी के तो नियम हैं, या जो खर्चा भी करना है उसके भी कुछ नियम तय हैं और कितना खर्च कर सकते हैं उसमें से कैसे खर्च कर सकते हैं उसकी सरकार की इंस्ट्रक्शंस हैं। एफडी कब करवानी है कैसे करानी है कहाँ करानी है उसके भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे बाहर जा नहीं सकते। लेकिन ये पक्का है भारत जी और प्रीतम जी के ग्राम पंचायत कम से कम यूनिसपुर की ग्राम पंचायत के बारे में कह सकते हैं ये लगभग आत्मनिर्भर जैसी ग्राम पंचायत है। ये हमारा कहना ये कि ये अपने धन का और बेहतर उपयोग कैसे करें इसके लिए ये हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान से जरूर सहयोग और हैंड होल्डिंग पालें। कचरे का निस्तारण कैसे करते हो भाई प्रिंस जी?
6: सर मेरे गाँव में ना कचरा शेड है।
3: क्या है?
6: कचरा शेड है मेरे गांव में सर।
3: कचरा शेड बनाया आपने?
6: जी जी सर।
3: तो क्या घर घर से कचरा जाता है?
6: हाँ घर घर से कचरा लेके आता है सर, गांव में पंचायत फंड से लगा रखा है सर वो। हाँ। सुबह रिक्शा लेके
3: हाँ
6: हमें पीछे रिक्शा भी मिली थी विधायक जी ने दी थी। भगवान दास कबीरपंथी जी ने, जो बैटरी वाली सर, वो घर घर जाता है सर, गली गली फिरता है।
3: वो एक है आपके पास रिक्शा, एक से ज्यादा है?
6: एक है सर मेरे पास।
0: नमस्कार।
3: और इसका जो ड्राइवर है, इसको चलाने वाला है, वो कौन रहता है?
6: मेरे गांव की है सर, कुलदीप
0: जी।
3: तो उसको कितने पैसे देते हो आप?
6: मैं सर 8100 रुपए देता हूँ उसको पर मंथ।
0: जी जी जी।
3: 8100, कितने घंटे काम करता है ये रोज?
6: सर ये सुबह घर घर जाता है, कितने टाइम लोगो उसको सर? 1200 बजे जाते हैं पूरे गाँव फिरने में, सुबह 8 बजे चलता है जी। जैसे रिक्शा छुट्टी है ना, पर जाती है, फिर उसको झाड़ने के लिए जाता है, फिर दोबारा जाता है।
3: तो इस कचरा शेड में जो कचरा इकट्ठा होता है, वो गीला सूखा अलग अलग करते हैं क्या?
6: अलग अलग करते हैं सर, वहाँ कैबिन बने हैं सर इंटो के।
0: अंबाला में कहाँ
6: करते हैं सर उसको?
3: फिर उसका निर्धारण कैसे होता है? कचरा शेड में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसका क्या करो आगे?
6: बस उसके बाद तो सर वहाँ पड़े रहते हैं, जब जाते हो जी उसको फिर अपना जहाँ जंगल में जहाँ डालते हैं, फिर वहाँ डाल देते हैं, मैं फिर इकट्ठा कर लेते हैं सर वहाँ। मैडम है रेनू जी, वो भी विजिट करते हैं, पिछली बार भी टीम आई थी।
0: अगर आप अपनी
6: कचरा शेड को देखने के लिए सर
0: पर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हम
3: इसमें जरूर जो है ना, आपके कचरे के निस्तारण की विशेष योजना बन सकती है।
0: नहीं करते
3: हैं हम, वो हमारे यहाँ संदीप भारद्वाज जी हैं, और इस विषय की थोड़े से अधिक विशेषज्ञ हम उनको कह सकते हैं, वो हैं। तो आप जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ, इस तरफ आना होगा
0: आप
3: आपका,
0: हमारे इस नंबर पे, जिस नंबर पे आप मेरे से बात,
3: उनसे मैं कहूंगा कि वो आपकी मदद करें।
6: मुझे आपसे मिलने के लिए किस दिन आना पड़ेगा?
3: मेरा नंबर आ गया आपके पास?
6: हाँ जी सर आ गया।
3: हाँ तो मुझे फोन कर लीजिएगा
0: मैडम, वो आपकी जगह है, बट भारत सरकार
3: फोन करके आप तय कर लीजिएगा। और
0: लाइव जो है कोशिश करते हैं हम ज्यादातर,
6: आप वाला नंबर सर यही था ना, 9855,
0: इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेजेंगे।
6: शुक्र दोबारा बोलना, फोन आ गया जो बीच में
0: फरमाइशी गीतों का।
3: हां 88 मेरा नंबर है,
0: हम आपका नाम भी लेंगे और आपकी जो फरमाइश होगी
3: 98126।
0: पूरे हफ्ते जो भी कार्यक्रम होते हैं वो प्री
3: 00
0: और जो हम यहां से करते हैं, इस समय भी 387 चल रहा है रेडियो पर, जो इस समय अगर आप सुन रहे हैं
3: इस नंबर पर, आप फोन करके समय तय कर लीजिएगा और जब जैसा दाव लगे
0: एक अलग नंबर
3: है, मुलाकात होनी चाहिए ताकि हम चीजों को आगे बढ़ा
0: कर सकते हैं। पर अगर
3: गांव में इस समय आपके ऐसे कितने पूर्व सरपंच हैं जो अभी हैं, जीवित हैं,
0: फरमाइश भेजिए जो 5 तारीख को हम करने वाले हैं।
6: मेरे फादर साहब हैं, दो चार
0: धन्यवाद
6: जी।
3: क्या नाम है आपके पिताजी का?
6: रमेश चंद्र
3: जी हैं। और
6: फिर उसके आगे सर रामनाथ शर्मा बने थे 2010 से 2015।
3: रामराज जी जी
6: नहीं, रामनाथ शर्मा।
3: रामनाथ
6: शर्मा
3: जी
6: जी सर, उससे 15 से 20 बने थे, 21 तक रहे हैं, जो चुनाव लेट वो सर एक्सपायर हो गए।
3: अच्छा तो आपको दो तो ये हैं अभी, इनसे पुराना भी कोई है क्या?
6: नहीं उनसे पुराना तो हाँ सर, लेडी थी कमला देवी 2000 से 2005।
3: कमला जी की उम्र
6: उनकी सर उम्र होगी 70 के आसपास सर।
3: तो कभी ये, चलो पिताजी से तो आपकी बातचीत होती होगी, ये रामनाथ शर्मा हैं, कमला देवी हैं, इनके साथ कभी बैठ के इनसे भी सलाह लिया आपने अपनी चौधर अपनी सरकार चलाने खातर भी? थारा भी तजुर्बा बता दो कुछ।
6: नहीं मिलते हैं सर, मेरे फादर साहब तो देते रहते हैं जी, ऐसे काम करना ऐसे कर लाना ऐसे करना।
3: सरकारी नौकरियां कितनी है आपके गाँव में?
6: मेरे गाँव में सरकारी नौकरी सर 10 के आसपास ही है।
3: सबसे बड़ा अधिकारी कर्मचारी कौन है जो सरकारी नौकरी करते हैं?
6: मेरे गांव में सर मिंदर जी हैं, EIC चीफ पंचकुला मार्केट कमेटी में।
3: क्या है ये क्या है?
6: मिंदर जी।
3: हाँ क्या लगे हैं वे?
6: वो सर चीफ हैं, चीफ और EIC मार्केट कमेटी बोर्ड में पंचकुला,
3: मार्केटिंग बोर्ड में
6: जी जी,
3: इंजीनियर इन चीफ
6: जी,
3: बहुत बड़ा पद होता है ये।
6: हाँ जी हाँ जी सर।
3: चलिए बहुत बढ़िया,
6: तो ये गांव में
3: आते थे कभी कभार?
6: हाँ आते हैं सर गांव में, मैं भी मिलने जाता हूँ उनके पास।
3: अभी इनसे भी पूछना चाहिए कि भी मार्केटिंग बोर्ड से आप हमारे गांव में कुछ विशेष करा सकते हो, दिलवा सकते हो।
6: मैं सड़क के लिए बोलता हूँ उनको, उसमें सर कर्मों का रास्ता पड़ जाता है, कुछ सरकार के प्रावधान है, इतना कर्म का रास्ता ही तार पुल वाला बन सकता है।
3: अच्छा
6: एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते हैं सर, वो कम कर्म के रास्ते हैं सर, जैसे 2 क्रम के रास्ते हैं सर, 11 फुट के हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है सर वो ज्यादा की है। तीन क्रम के रस्ते को ही पक्का करती है।
3: बच्चों का क्या रुझान है, यूनुसपुर के बच्चे क्या करना चाहते हैं अगली पीढ़ी?
6: सर सब बाहर जाना चाहते हैं जी,
3: बाहर जाने फिर हैं,
6: बाहर जाने फिर हैं जी।
3: सुन लिया भारत जी?
0: सर मैं वही
6: करते हैं सर,
3: सारे कनाडा जाने की तैयारी बैठे ने,
0: वही सोच

0: खर्च कर सकते हैं, ताकि समय रहते उस पैसे का उपयोग भी हो और गांव वालों का फायदा भी हो। क्या ऐसा कोई मतलब ऑप्शन है?
1: देखिए भारत जी, क्या होता है कि जब सरपंच चुनकर आते हैं,
0: जी
1: जब ब्लॉक समिति के सदस्य चुनकर आते हैं, उन सब को सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है,
0: जी
1: और जो ग्राम सचिव जब नियुक्त होते हैं उनको उस समय भी उनका कामकाज बताया जाता है, और गांव की विकास योजना, जिसको गुरविंदर जी ने पूछा था, सही सवाल था, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो बनाने की कड़ी में ये जो ग्राम सचिव है आपका, जिसका आपने प्रश्न किया, इसकी बड़ी बड़ी बड़ी भूमिका है।
0: जी
1: इसको पता होता है और होना चाहिए कि कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, कौन से काम किस फंड से होने चाहिए, कौन सी योजना का पैसा लगाने के लिए नियमावली क्या है।
0: जी सर
1: दूसरा, जब जीपीडीपी बनती है तो ग्राम सभा में बननी चाहिए, इसी की जिम्मेदारी है ग्राम सचिव की, सरकार का अधिकारी है वो, गांव की सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी कह सकते हो आप उसको,
0: यस यस यस
1: तो उसकी जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा में लोगों की हाजिरी अच्छी होनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स आने चाहिए, महिलाएं भी आए, बच्चे भी आए, कमजोर तबके के लोग भी आए, चिकित्सक भी आए, शिक्षक भी आए, स्कूल के प्रिंसिपल भी आए, आंगनवाड़ी की महिलाएं भी आए, सारे लोग आए और वो अपनी अपनी बात कहें, वहां पर बैठ के डिसाइड हो कि भाई सरकार से इस बार इतना पैसा आने की उम्मीद है, फलानी योजना में इतना पैसा फलानी योजना में आएगा, इतना हम एमपीलैड से भी ला सकते हैं, विधायक से हमें इस रास्ते पैसा मिलने वाला है, और हमारा अपना अपनी जमीन से 60 लाख रुपए, 62 लाख रुपए, 50 लाख रुपए साल का आएगा, अब हम इसको कहां कहां खर्च करें, ये बनना होना चाहिए ग्राम जीपीडीपी बनाते समय काम, और वो बहुत स्थानों पर सिर्फ कागजों में हो रहा है। अभी भी केंद्र सरकार, राज्य की सरकार बार बार कह रही है जीपीडीपी बढ़िया से बनाओ, और केवल बनाने के लिए नहीं कहते हम तो साहब जीपीडीपी बनाने का प्रशिक्षण भी देते हैं।
0: जी सर
1: तो बहुत सारे गांवों में अभी भी अच्छी जीपीडीपी बनाने की तैयारी, या मन मूड वहां के सरपंचों का या वहां की सरकार का नहीं है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भारत जी की अनुमति से मैं यही कहूंगा कि जो हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना है, भारत जी,
0: जी सुन रहा हूँ मैं सर सुन रहा हूँ।
1: जो हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना है, ग्राम पंचायत विकास योजना वो गांव में बननी चाहिए, गांव में बननी चाहिए, बनती तो गांव में है, आप कह सकते हो ये कि जी और क्या लंदन में बनती है साहब गांव में, लेकिन कैसे बननी चाहिए गांव में, जब हम ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत योजना गांव में बननी चाहिए, तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि गांव की विकास योजना, सालाना विकास योजना, वो ग्राम सभा में बननी चाहिए, ग्राम सभा के बीच में बैठ के बननी चाहिए, ग्राम सभा के सभी सदस्यों की सलाह से बननी चाहिए, उनकी आपत्तियां, उनके सुझाव, उनकी आकांक्षाएं, उनको सुनने के बाद बननी चाहिए। तो बहुत सारे स्थानों पर अभी ग्राम पंचायत विकास योजना नियमों की जो आवश्यकताएं हैं
0: वो पूरी नहीं
1: उनके
0: कर पा रहे।
1: अनुसार अभी नहीं। आज हम ये आह्वान कर सकते हैं, सारे के सारे लोग मिल करके यूनिस्पुर के सरपंच को माध्यम बनाते हैं कि भाई ग्राम विकास योजना वो किताब के हिसाब से बने साहब,
0: जी
1: किताब
0: सर
1: के हिसाब से बने यानी नियमों के हिसाब से बने, और जनमन के अनुरूप बने, जनता के, ग्रामवासियों के मन के अनुकूल बने, इसकी इस दिशा में बढ़ेंगे। क्या मैं यूनुसपुर के सरपंच से चलते चलते, क्या मैं यूनुसपुर के सरपंच प्रिंस से चलते चलते ये अपेक्षा कर सकता हूं, वचन ले सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं कि यूनिसपुर की अगली ग्राम विकास योजना वो आदर्श तरीके से बनेगी, नियमों के हिसाब से बनेगी, सबको साथ लेकर के बनेगी, क्या आप प्रिंस भाई ये वचन देने के लिए तैयार हो?
0: जी सर, मैं तैयार हूँ वचन देने के लिए। सर सर बताऊँ क्या प्रॉब्लम है। हम गाँव में मैंने अधिक रुकते हैं, अभी ग्राम सभा की मीटिंग है तो सब आए, तो गांव वाले सब आते नहीं, छोटे बहुत ही लोग आते हैं जी। अब घर से सर किसको बुला के ले गया है।
1: चलिए इस चुनौती से निपटने, चुनौती से भी निपटा जाएगा। जी भारत जी, राम राम।

0: करने का समय आ गया है।
1: जी, राम राम करने का समय आ गया, बट मैं भी सर कोशिश करता हूँ कि जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है उसको भी और नजदीक से हम समझें और सीखें। और मैं प्रिंस जी को यही कहूंगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं आप उसमें थोड़ी फुर्ती लाइए, पर केवल आपके फुर्ती लाने से काम नहीं होगा, उसमें आपके जो ग्रामवासी है उनका भी योगदान बहुत जरूरी है। हम यूनुसपुर के ग्रामवासियों को भी अनुरोध करते हैं कि वो आए और वो मांगे उनको क्या चाहिए, और प्रिंस जी गांव के सरपंच होने के नाते सरकार के साथ जुड़ के और ग्राम सचिव के साथ जुड़ के अपनी जो जरूरतें हैं गांव के वो पूरी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम कल आपसे फिर मिलेंगे 4 बजे, और उम्मीद करते हैं कि हम यूनुसपुर के जो ग्राम पटल है उसकी जानकारी हम कल के कार्यक्रम में देंगे। जब आप यहां से जाएंगे आप अपना वीडियो बना के वीरेंद्र जी को भेजेंगे और उसकी जानकारी हम कल के कार्यक्रम में बताएंगे। और मेरी ओर से राम राम। प्रीतम जी आपकी ओर।
0: ठीक है सर, नमस्कार
2: सभी को।

सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: पेश है प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैनावारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

लिखी गजलों पर मावनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूँ रेट्रो हिट्स का एक और नया अंक। इस अंक में आज हम बात करेंगे विश्वास की, और उसी पर आधारित आपको कुछ गाने भी सुनाएंगे। विश्वास। विश्वास है एक आईना, जो टूट जाए तो मुश्किल है जुड़ना। दिल से जो एक बार उतर जाए तो फिर मुश्किल है संभालना।

0: कौन हो।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

दोस्तों, खुशामदीद। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। इस सफर में आप हमारे साथ शामिल रहेंगे, मुझे पूरा

समय की रफ्तार थम चुकी है। तुम्हारे लौटने के इंतजार का ये कैसा आलम, हवाओं की तरह आते हो चले जाते हो इस वादे के साथ कि फिर लौट आऊंगी। हमारी सितम जरीफी देखिए, तुम्हारी आहटों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर छूने का तसव्वुर ज़हनो दिल से कौंसो दूर। बेशक ऋत बदले, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की खुमारी हमारी चाहतों को ना बदल सके। बख्श के ख्यालों को रौनक, राहों को कर गए मुनव्वर। मेहरबानी

जाने क्यों इन उदासी भरे लम्हों में एक कसक सी उठती है दिल में कि इन खामोश पुरसकून पर जज्बाती रातों में कोई आता है जरूर और पैरों को छूकर दबे पांव निकलता है यूं ही मुस्कुराकर और मेरी करवटों को महका कर अधूरी मुरादों को पूरा कर इन बुझी शमाओं को रोशनी से भर देता है। जाने क्यों मेरी उम्मीदों को जगा देता है यूं ही

या एक पहेली, एक ऐसा सच जिसे शायद आज तक कोई न जान सका, और ये भी अपनी जगह सही है, जीवन है पानी का बुलबुला। मुट्ठी में रेत की मानंद जैसा यह जीवन कब फिसल जाए हाथों से हर कोई है बेखबर। जीवन की इस पहेली को न कोई समझा है और न कोई जाना है।

जो रुक गए कदम, तो शायद बहक गए भटक गए, ये रास्ते आखिर जाते कहां है? क्या मुसाफिरों को मंजिल मिल जाती है? बेशक सफर लंबा हो, पर दौराने सफर साथी तो मिल जाना चाहिए जो कभी पीछे छूट गए थे, वो शायद लौट के नहीं आएंगे, शायद लौट के नहीं आएंगे। लेकिन नई परिंदे हमारे साथ उड़ान तो भर सकते हैं।

जब बात चली है तो आज मेरे सितारों से बात हुई। सितारे जो आसमानों में जा बसे हैं, तन्हा तन्हा खामोश वजूद लिए दबी दबी मुस्कुराहटों का जेवर पहने हुए, खुशबू का लिबास मोहब्बतों की चादर ओढ़े। सितारे जो गुप अंधेरों में तैरते हैं बादलों के साथ, रात भर पहरेदारी में मसरूफ आसमानों की निगहबानी में मुंतजर, हर पल हमारी मुलाकातों में शामिल ये सितारे रहते ही बेपरवाह।

फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत।

जी हाँ दोस्तों और श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। समय हो गया है आपसे विदा लेने का आज के लिए। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोटोकॉल के अनुसार आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:22। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। वक्त हो चला है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के आज के इस खास सफर को यहीं विराम देने का। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के इस पहर तक सुरों और बातों का जो कारवां हमने मिलकर सजाया, उससे आप सब ने बेहद प्यार दिया, और रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की तरफ से आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान शक्ति की बात करेंगे, महान हस्ती की बात करेंगे, जिन्होंने हमें बहुत दशकों तक शुरू से सराबोर किया। दोस्तों, आज का यह समापन सामान्य दिनों जैसा नहीं है। आज हमारा दिल थोड़ा भारी है। बीते 31 मई को हमारे देश ने संगीत जगत की एक और अनमोल धरोहर, एक और स्वर कोकिला को खो दिया। बहुमुखी और सुरीली आवाज की मल्लिका आदरणीय सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 50, 60 और 70 के दशक में अपनी जादुई आवाज से हर दिल पर राज करने वाली सुमन जी ने अपने पूरे करियर में 800 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर सुगम संगीत और फिल्मी गीतों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, और भारतीय संगीत जगत में एक बेहद प्रतिष्ठित नाम बनाया। आपने हमारे रेडियो वितस्ता पर उनके जीवन और संगीतमय सफर पर एक विशेष कार्यक्रम सुनहरे पल कई बार सुना होगा, जिसे आप सभी श्रोताओं ने बहुत सराहा। आज उनके जाने से संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है। रेडियो वितस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं की ओर से और पूरी टीम रेडियो वितस्ता की तरफ से हम सुरों की इस महान साधिका को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सबकी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और साथ में मोक्ष भी प्रदान करे। आइए आपको बताता हूं सुमन कल्याणपुर जी के कुछ सदाबहार और मशहूर गाने जो आपने कई बार गुनगुनाए होंगे। उनकी यादों को ताजा करते हुए आइए उनके कुछ गाने और गीतों को याद करते हैं जो हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। पहला गाना है ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, फिल्म बात एक रात की से। अगला आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबां पर, ब्रह्मचारी फिल्म से और रफी साहब के साथ उन्होंने

ये गाना गाया था। एक और गीत है, ठहरिए होश में आलू तो चले जाइए, फिल्म मोहब्बत इस कदर, ये गाना भी रफी साहब के साथ उन्होंने गाना गाया था। तुम्हें दिल से चाहा था, तुम्हें दिल से चाहा है, फिल्म चांदनी से ये गीत। और एक और गीत, मेरे संग गा गुनगुनाना, फिल्म जानवर से। और भी अनगिनत गाने हैं सुमन कल्याणपुर जी ने जो गाए हैं, खास करके जब रामायण सीरियल आया था टेलीविजन पर बहुत साल पहले, उस में भी उन्होंने अपनी आवाज दे दी थी और जो लोगों को बहुत पसंद आई थी। उनकी आवाज की सादगी और गहराई हमेशा हमारे सुनहरे पलों का हिस्सा बनी रहेगी। श्रोताओं, यादें कभी मरती नहीं और सुर कभी खामोश नहीं होते, इसी उम्मीद के साथ कि कल सुबह फिर एक नई उमंग और नई तरानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब समय हो गया है आज आपसे इजाजत लेने का। चलते चलते आज की रात की आखिरी शायरी आप सभी के नाम, हर दिन की तरह सुरों का ये सफर, ये महफिल यहीं थमती है। सुरों का ये सफर, ये महफिल यहीं थमती है, मगर आपकी मोहब्बत हर लम्हा दिल में महकती है। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर नई सुबह के साथ। अलविदा कहने से दोस्ती कहां कम होती है, अलविदा कहने से दोस्ती कहां कम होती है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय। और अब आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देते हैं और एक नए कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। कल 3 जून 2026 बुधवार को जो कार्यक्रम पूरे दिन के लिए आपके लिए लाए हैं, मुख्य कार्यक्रमों का विवरण ये है। सभा की शुरुआत होती है सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए प्रकाश प्रवाह। 6 बजे भक्ति संगीत और कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर सुनहरे पल एपिसोड 11 गीता दत्त के ऊपर तैयार किया गया, पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 6 होगा, शीर्षक होगा जीने की राह, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 नारी और सम्मान का एपिसोड 8 और 10 बजे परिचर्चा, हमारे साथ होंगे विशाल शर्मा डार्ली, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी। और कल बुधवार है, कल आप पिछले हफ्ते की यानी पिछले शुक्रवार की जो आपकी फरमाइश का पुनः प्रसारण सुनेंगे, तो आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है जरूर सुनेगा अगर आपने शुक्रवार को ये ना सुना हो। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 बजे कल हम सुमन कल्याणपुर की याद में कार्यक्रम सुनहरे पल आपको सुनाएंगे, एपिसोड 6 पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है लम्हे रुक गए। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। एक और जानकारी आप सभी के लिए, हम एक कार्यक्रम ला रहे हैं भगवत गीता जीवन का सार। ये कार्यक्रम हमने तैयार करने का सोचा और प्रसारित करने का सोचा, हमने ये सोचा कि हम सभी भारतवासी, हम सभी भारतवासी अपने धर्म के साथ, अपने गीता उपदेश के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, एक कोशिश हमारी ओर से है। हमने कार्यक्रम का नाम रखा है भगवत गीता जीवन का सार। ये कार्यक्रम हम पहला एपिसोड इसका लाइव करेंगे अपने फेसबुक पेज पर और साथ में रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 पर भी ये लाइव होगा। लाइव होने का मकसद हमारा ये है कि आप तक जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो संयोजक हैं गीता परिवार के पूरे भारत वर्ष से, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ इन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे और गीता सार के बारे में आपको, हमको, मुझे, हमारी टीम को बताते रहेंगे। तो पहला कार्यक्रम इसका शुक्रवार को होगा 5 जून को सुबह 11:30 से। और हमारे साथ होंगे संयोजक गीता परिवार जम्मू से भास्कर दास और उनके साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे। कार्यक्रम का नाम होगा भगवत गीता जीवन का सार।
यह हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लाइव होगा, साथ में हमारे फ्रीक्वेंसी 90.0 पर भी ये कार्यक्रम लाइव होगा और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे, आपको हम एक नंबर उस समय फ्लैश करेंगे, आपको उसी नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करना होगा, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल, तभी हम आपकी कॉल को ले पाएंगे और कार्यक्रम में उसको शामिल करेंगे। और जितने भी हमारे मेहमान होंगे उनसे भी आप लाइव बात कर सकेंगे, उनसे आप अपना प्रश्न पूछ सकेंगे। कार्यक्रम का नंबर हम उसी समय आपको बता देंगे और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपका साथ रहे तो इस कार्यक्रम को हम हफ्ते में एक बार से शुरू करके दो बार या तीन बार भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम वो बात करें जिससे हो आपको सरोकार। तो अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो व्यवस्था हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। मिलते रहिए और मिलेंगे सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।